0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا.
1: सौदागर मूवी का ये गाना आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज में ये वाला गाना था. सुबह के 5:32 हो चुके हैं और पता नहीं आप मेरी तरह यकीन कर पा रहे हैं या नहीं, पता नहीं आपको फील होता होगा या नहीं कि इतनी जल्दी साल बीतने वाला है. मतलब हम सितंबर में हैं, आज 5 सितंबर हो गई है, घड़ी के कांटे भाग रहे. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अरे मतलब अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस जीवन के पलों को ना खुशहाल बनाना चाहिए, जो भी है बस यही पल है. भोर सुहानी सुनते रहिए, मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर.

ब्लैक मूवी का ये गाना था अलका याग्निक की आवाज़ में, एकदम से मैं ब्लैंक हो गया था। खैर, गर्मियां बस जो हैं जाने ही वाली हैं और सर्दियां शुरू होने वाली हैं, फिर हम दिल्ली वाले जो हैं आलू पूड़ी ज़्यादा खाएंगे और फिर वो भी तीखी। मतलब देखिए, वैसे तो हम दिल्ली वाले खाने पीने के मामले में मौसम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ठंडी में हम लोग ना दो मेथी के पराठों की जगह चार खा लेते हैं और सच में बड़ा मज़ा आता है। नवंबर दिसंबर में यानी मुफ्त की एसी जैसी ठंडी हवा में मिलती है। और बाकी हाँ, एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी त्यौहार की ढेरों बधाई। बाकी गणपति जी के आगमन की तैयारी भी जोर शोर से होने लगी है। 14 सितंबर से श्री गणेश जी हमारे घर विराजमान होंगे और घेवर के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वो होगी मोदक की मार्केट में। यानी खुशियों के दिन आ रहे हैं। बाकी अच्छा, खुशियों के दिन आ रहे हैं, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ बोर सुहानी शो से और आपसे अनुमति मांग कर जाऊँगा। बाकी दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा और हाँ, अगले घंटे आपके साथ होंगी सुनीता चौहान अर्पण शो में। तो इसी तरह FM गोल्ड चैनल सुनते रहिए। और वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैं उस टाइम नहीं था तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बात शेयर कर लेता हूँ कि FM गोल्ड 1 सितंबर को जो है पूरे 25 साल पूरे कर चुका है। आपकी ढेर सारी विशेस देखी थी मैंने, तो उसके लिए भी आपका थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे मेरे मन में आया कि आपसे बात करूँ इस बारे में भी। तो अब मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्ते।

0: प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1,907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए. एंड ये तो बताया था बहुत सारे टीचर्स ने हमें, लेकिन शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में मतलब बहुत क्लियरली बता दिया था. चक दे इंडिया हैज़ बीन सच अ वंडरफुल मूवी. अभी भी अगर मैं यू नो सुकून से बैठ जाऊँ, अगर चक दे इंडिया टीवी पर आ रहा है तो मैं देख ही लूँ सारा मूवी. एंड एक्स्पेशली लास्ट के 20 मिनट तो भाई साहब क्या मज़ेदार फिल्म है. इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जोश भर देता है. एंड आज टीचर्स डे है तो बस चक दे इंडिया में वो छोटी छोटी बातें याद करते हैं. स्पेशली वो लास्ट वाला जो गोल है, जो विद्या लेती है, एंड यू नो शाहरुख खान का इनर वॉइस सुनाई देता है कि राइट या लेफ्ट, लेफ्ट या राइट, ये तो सीधा मार रही है. ऑल दीज लिटल थिंग्स इन मूवीज स्टे विद अस. एंड दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, लेट्स टेक इट अवे. दिस इज चक दे इंडिया टाइटल ट्रैक.

एक टीचर तो मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं और एक अच्छे टीचर आपको लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है सिखा देते हैं। हिस्ट्री तो सिखा ही देते हैं, लेकिन एक अच्छे टीचर ये सिखाते हैं कि क्या याद रखना चाहिए। वेल, इंग्लिश टीचर तो मतलब मस्त सिखाते हैं, लेकिन एक महान टीचर आपको अपनी पहचान बनाने का सिखाते हैं, अपनी आवाज़ सुनाने का। मतलब जितनी आपकी आवाज़ बुलंद होती है, उतनी आवाज़ आपको आपकी आवाज़ सुनाई जाती है, सुनी जाती है, ये कहते बोलते हैं। एंड महान टीचर्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, दैट्स वाई वी रिमेम्बर सर्टन टीचर्स लॉन्ग आफ्टर वी फॉरगेट आर टेक्स्ट बुक्स। एंड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक इज आर अमेजिंग टीचर। वी मे फॉरगेट द फॉर्मूला, चैप्टर्स भूल जाते हैं, फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, लेकिन जो शब्द क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। वो शब्द ऐसे हैं जैसे यू कैन डू दिस, डोंट गिव अप, आई मीन वाई इज़ इट सो डिफिकल्ट, गिव इट अ ट्राई वंस अगेन। ये सारे वर्ड्स ना बहुत काम आते हैं लाइफ में।

वेल वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे टुडे. व्हाई इज इट अ ब्यूटीफुल डे? बिकॉज टुडे इज टीचर्स डे और हम आकाशवाणी के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें. तो यहाँ पे मैसेज आया है जयदीप का. ही सेज, जय श्री जी, पहले तो हैप्पी टीचर्स डे आपको. आप हम सभी को बहुत कुछ सिखा जाती है. बहुत थैंक्स. अरे मैं क्या सिखाती हूँ, रेडियो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है जयदीप. वेल थैंक यू फॉर दैट. प्लीज़ कैन यू रीड अ मैसेज फॉर मी? डेफिनेटली. थोड़ा बड़ा होगा शायद, लेकिन पढ़िएगा प्लीज़. बड़ा छोटा क्या होता है, मैसेज मैसेज होता है. चलिए पढ़ते हैं जयदीप क्या कहते हैं. मैं तीन लोग को मेंशन करना चाहता हूँ. फर्स्ट पर्सन, मेरे माँ पापा. ये फर्स्ट पर्सन को हैप्पी टीचर्स डे, इनके लिए शब्द काफ़ी नहीं है. सेकंड पर्सन, मेरे गुरुजी, जिनका नाम है बी वेंकट रामन राव जी, जिन्होंने मुझे फिटनेस, लाइफ, स्पिरिचुअल गाइडेंस हमेशा दिया. इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दी. एंड द थर्ड पर्सन इज़ मेरी स्कूल की सोशल टीचर, वनजा टीचर, वनजम्मा टीचर. शी इज़ चेंज्ड माई वे ऑफ थिंकिंग राइट इन 9th क्लास. मैं इन तीन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. विदाउट देम माई लाइफ वुड नॉट बी बेटर एंड कम्प्लीट. हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाया. आप मेरे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं, एक एक एहसास, एक खास इंसान हैं जिन्होंने मुझे बेहतर बनाया. थैंक यू. एक सॉन्ग प्ले करिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही पिता हो, फ्रॉम द मूवी मैं चुप रहूंगी. मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी जयदीप सॉन्ग प्ले करने के लिए. बट सच अ ब्यूटिफुल टचिंग मैसेज, रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल. माँ पापा, गुरुजी और सोशल टीचर, इट्स वेरी स्वीट. हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी टीचर्स डे कह रहे हैं इमरान जी. थैंक यू सो मच इमरान जी. गुड आफ्टरनून मैम. एंड सॉन्ग गोरी के हाथ में जैसे ये चला, मूवी मेला. बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी. सरवर अली साहब ने मैसेज भेजा है गुड आफ्टरनून कहते हुए और रेडियो के साथ एक छोटा सा फोटो भेजा है. इस फोटो के बारे में कुछ तो बता दीजिए प्लीज, ताकि मैं रेडियो पर बता सकूं कि ये फोटो है क्या. वेल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल मैसेजेस. अगर आप भी व्हाट्सएप करना चाहते हैं सो 9140-232-34822 पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं. अभी हम जिंदगी कैसे हमें सिखा जाती है. जिंदगी इज द बेस्ट टीचर, लाइफ इज द बेस्ट टीचर और सब्र इज़ अ बेस्ट टीचर आई वुड से. और इन गानों में से एक बेहतरीन गाना मैं ढूंढ कर लाई हूँ. चलिए सुनते हैं. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत रहती है, तो मेरी आवाज़ क्या. हाँ चलिए, लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. स्टे ट्यून्ड.

0: अरे वाह, टीचर्स डे है और इतने सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन और यहाँ पर अशोक जी ने मैसेज भेजा है। वो कहते हैं, आंखों में अरमान दिया कराते हैं, आंखों में अरमान दिया कराते हैं, हम सब सबा की नींद चुरा लिया करते हैं। अब जब जब आपकी पलकें झुकेंगी, समझ लेना हम आपको याद किया करते हैं। वेल, ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच अशोक जी। और भी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। जयश्री जी नमस्ते, आपकी आवाज़ और प्रेजेंटेशन ऑसम, थैंक यू सो मच। रेनबो के लिसनर को नमस्ते। सब टीचर्स को प्रणाम। वॉट एवर हैपन इन माई लाइफ फॉर सक्सेस, ऑल टीचर्स आर देयर बिकॉज ऑफ देम। आई रीच टूडे, आई रीच हियर टूडे। आई फाउंड टीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ एंड माई टीचर्स नेम वॉज कालिदास मोहालकर जी। जय श्री कृष्ण। वेल, बसवंत जी शांतिनगर से लिखते हैं। एंड वेल, और भी मैसेजेस आ रहे हैं। और बसवंत जी ने एक दो लाइन्स लिखे हैं, दो शब्द लिखकर भेजे हैं, तो मैं पढ़कर सुना देती हूँ। तजुर्बे उधार नहीं लिए जाते किसी से, तजुर्बे उधार नहीं लिए जाते किसी से, उम्र गवा कर कीमत चुकानी पड़ती है। वाह वाह वाह, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। वेल लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। खूबसूरत गाने, खूबसूरत गाने। और एक गाने की रिक्वेस्ट आई है, जयदीप ने रिक्वेस्ट किया है, तुम ही हो माता पिता, मैं चुप रहूंगी फिल्म से। इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
1: కళలు, సాహిత్యం, శాస్త్ర విజ్ఞానం, ప్రజాసేవ, క్రీడలు, ఇలా ఏ రంగంలోనైనా అపూర్వ అసాధారణమైన సేవలందించిన ప్రతిభామూర్తులకు భరతమాత అందించే అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న. ఈ అద్వితీయ గౌరవం అందుకున్న మహనీయుల జీవన రేఖలని, ఆయా రంగాలలో వారు అందించిన విశిష్ట సేవలని వివరిస్తూ ఆకాశవాణి వివిధ భారతి FM 102.8 మెగాహెడ్స్పై ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు శ్రోతల కోసం సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక భారతరత్న.

0: तू तो मेरा बेटा है, तू बेटी कम बेटा ज़्यादा है करके कहते हैं बहुत सारे फादर्स, क्योंकि वो हौसला देना चाहते हैं। एंड यस, फादर्स आर द बेस्ट टीचर्स फॉर डॉटर्स। एक अलग ही रिश्ता होता है फादर्स और डॉटर्स का, आई वुड से, एंड मदर्स और सन्स का। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई डोंट नो व्हाट द साइंस इज, लेकिन बहुत ही गहरा रिश्ता होता है फादर्स एंड डॉटर्स का इंडीड। एंड दंगल इज़ वन सच मूवी जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। वेल मूविंग अहेड, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, सारे खूबसूरत गाने। मुझे लगता है कि इतने सारे गाने हैं, एक कौन सा प्ले करूँ, ये वाला या वो वाला। जब तक तो मैं डिसाइड करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आप कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड। दिस इज रेनबो FM 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ।
1: Hey, very hungry. What's special today?
2: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
1: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and

डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, डोंट गिव अप, मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया है। वेल, वेलकम टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ, एडिंग कलर टू आवर लाइफ आर द लाइफ लेसन्स दैट लाइफ टीचेस अस। लाइफ इज आर बिगेस्ट टीचर, ये बिल्कुल सब सहमत रहते हैं इससे कि जिंदगी हमें इतना कुछ सिखा जाती है हर रोज, एंड वी ऑल आर लर्नर्स, हर दिन हर पल वी ऑल आर लर्नर्स। बड़े से बड़े डायरेक्टर्स हो, यू नो, कॉरपोरेट में, या बड़े से बड़े लोग हो जो इंस्पायर करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आई एम स्टिल लर्निंग। हम्बल, बीइंग हम्बल इज सुपर ट्रूपर डुपर इम्पॉर्टेंट। अभी एक खूबसूरत गाना, दिस इज लव यू जिंदगी। जब जिंदगी से आप प्यार करते हैं, तब यू जो सिखा जाती है ना जिंदगी, वो सब आसानी से सीख जाते हैं आप। लेट्स टेक इट अवे, दिस ब्यूटिफुल ट्रैक।

वेलकम बैक, आपसे ही बात कर रही हूँ। हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप मुझे? बस ज़रा आपकी आंखें बंद कर लीजिए। नहीं, आप ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप रेडियो सेट पर हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो एक बार आंखें बंद कर लीजिए और उनको याद कीजिए जो आपका नाम पहले लिखना आपको सिखाया है। उनको याद कीजिए जो शायद सिग्नेचर करना पहले आपको सिखाया है। उस टीचर को याद कीजिए जो आपको बहुत डांटते थे लेकिन आपके अच्छे के लिए। उनको याद कीजिए जो आपको इतना प्यार करते थे, यानी आप टीचर्स के पेट थे और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और सब दूसरे स्टूडेंट्स आपसे जलते थे स्कूल में। शायद उनको आप याद कर सकते हैं जो आपको ज़िंदगी के लेसन सिखा देते हैं। कभी-कभी ऐसे लोग जो पैसे ले लेते हैं हमसे और रिटर्न नहीं करते, वापस नहीं करते, वो भी सिखा देते हैं कि किसी और को पैसे ना दे। वेल, अब आके खोलिए और अगर इन सारे लोगों में से कोई भी आपसे टच में हो, फोन पे या कैसे भी, उनको एक मैसेज लिख दीजिए। टीचर्स तो क्लासरूम छोड़ देते हैं लेकिन उनके जो भी उन्होंने सिखाया वो हमारी ज़िंदगी से नहीं जाते, है ना? तो मैंने भी मेरे टीचर्स को मैसेज कर दिया है और वो सब परेशान हो गए कि क्या है ये आज, मतलब खुश हो गए, परेशान तो हुई लेकिन खुश हो गए, क्योंकि बहुत कम ही हम उन्हें याद करते हैं ना। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ स्टोरी एंड समवेयर इन दैट स्टोरी देर इज़ यूजली अ वंडरफुल टीचर। हैप्पी टीचर्स डे टू ईच वन ऑफ यू। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स प्लेइंग हियर एट आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। टेक इट अवे।

रोका किसने है आपको फोन करने के लिए 1 बजे से लेके 1:30 तक हम फोन कॉल्स लेंगे यहाँ पे, और फोन नंबर है 2323-0030, 2323-48211, 2970-4715। मेरी ही बातें सुनते रहेंगे या आपकी भी बातें मुझे सुनने का मौका देंगे? देंगे ना, बिल्कुल। सो लेट मी टेल यू, दिस इज आर लाइव फोन इन प्रोग्राम, दिस इज कॉल हेलो रेनबो, वेर यू कैन कॉल मी राइट हियर राइट नाउ लाइव। यस, it's not recorded, it's live, and we're gonna talk, and I do not know, it's like, you know, a lucky dip for me, because I do not know, it's lucky dip for me, not for you, ठीक है? आप तो बोलते हैं कि कॉल लगना बहुत मुश्किल है and all that, नहीं, तो मैं यहाँ, 3 buttons होते हैं, ये 3 lines में, तो मैं यहाँ एक बटन प्रेस करती हूँ और वो कॉल कनेक्ट हो जाता है मेरे कॉन्सोल से और उड़ उड़ के हवा में, उड़ उड़ के ऑन एयर से इन टू द माइक आता है, आपकी आवाज़ आती है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो अगर आप कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो प्लीज़ बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। 1 o'clock वी गॉन स्टार्ट आर हेलो रेनबो, लेकिन बात क्या करें यार, टीचर्स डे है, इससे बड़ा मौका क्या चाहिए? टीचर्स डे के दिन हमारे टीचर्स को याद करने का, और कोई ऐसी बात हो जो आपको अपने टीचर से याद है, या आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी के बेस्ट टीचर कौन है और आपके लाइफ के बेस्ट टीचर कौन है, मैं टीचर्स डे के बारे में बात करते हैं, मज़े करते हैं। इससे वाले एक छोटा सा गाना, एंड विल बी राइट बैक, ए ज़िंदगी गले लगा ले।

0: जी है,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी हूँ। रनिंग में रहती हूँ मैं हमेशा,
0: रनिंग में मतलब?
1: मतलब चलते रहना, मतलब
0: अच्छा, रनिंग,
1: बैठना नहीं, लेट जाना, मगर चलते रहना, कुछ भी झट बोल
0: बिल्कुल
1: के उठ जाना, ऐसा
0: नाइस वर्ड, मैं भी यूज करती हूँ
1: वैसा।
0: रनिंग में, वो मतलब मेरे को लगा ड्राइविंग ऐसे कुछ।
1: नहीं, अब
0: मैजबिन जी,
1: वही समझो
0: टीचर्स डे
1: मैं
0: है।
1: पानी से चलती गाड़ी, चलना शुरू करी तो पानी पीती हूँ, भागती हूँ।
0: कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑन दैट
1: आज
0: नोट।
1: के हिसाब से हमारे शेर खान भाई है उस्ताद, तो के टीचर
0: टीचर है,
1: सलाम
0: अच्छा
1: है उनको। और हमारे टीचर थे, चार टीचरान थे वुमेन कॉलेज में,
0: जी
1: हम
0: जी जी
1: सीवन
0: जी
1: सीखने जाते थे तो एक टीचर से बहुत मोहब्बत हो गई थी। गानों
0: मोहब्बत मतलब
1: भी
0: वैसी
1: चढ़ाते
0: वाली?
1: थे मगर सीवन
0: हाँ,
1: सिखाते थे, तो मेज के नीचे से जाके उनका ने बाजू खेल जाती थी मैं।
0: अब
1: और
0: आप
1: हमारे
0: टीचर्स के
1: नंबर
0: पेट
1: कई,
0: थे, यू फेवरेट
1: मेरे
0: टीचर थे
1: बहुत
0: आपके?
1: बहुत बहुत सीवन वुमेन कॉलेज में सीवन सिखाते थे कोठी पे, तो है सो
0: ओहो,
1: मरे दम तक मैं गई। बच्चा हुआ तो भी मेरे को दुरे शवर में आके देखे चारों
0: हाउ
1: टीचर। हाँ,
0: ब्यूटीफुल, हाउ
1: मैं भी
0: स्वीट।
1: अकीका हुआ तो सब ले जाके देना, मैं अभी तक भी वही वो करती हूँ सबको ऐसा।
0: आप मेरे को और भी किसे सुनने हैं आपके? आप लाइन पे रुकिए, लाइन काटिएगा मत। हाँ,
1: हाँ हाँ
0: और
1: ठीक है,
0: तमाम लिसनर्स के लिए खूबसूरत गाना ये, काली काली आंखें, ये हमारा रिक्वेस्ट गाना है। लेट्स लिसन टू दिस वन एंड एंजॉय। स्टे ट्यून्ड, दिस इज आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9, रेनबो कलर्स टू योर लाइफ।

0: मैं मिला, तुम मिली, नंबर मिला. ये है हेलो रेनबो. आपको बस कुछ नहीं करना है, हेलो रेनबो में फ़ोन करना है हमें एंड बस बातें करनी है. बात की जुगलबंदी, गानों का सिलसिला जारी रहेगा. 2323-0030, 2323-4821, 2970-4715 हमारे नंबर्स है. लेट मी सी हूज़ ऑन द लाइन. हेलो रेनबो.
1: गुड आफ्टरनून मैडम जी,
0: गुड आफ्टरनून श्रीनिवास राव सर, हाउ आर यू?
1: यंग द्रमानी
0: तुम्बा
1: हो
0: तुम्बा चनांगिनी, बहुत

0: हैप्पी टीचर्स डे सर।
1: ये मैडम आपको भी टीचर्स डे का मुबारक हो, सब लोगों को, अपने कॉलेज को, राज्य स्कूल, सबको हमारे तरफ से शुभकामनाएं।
0: बोलिए क्या यादें हैं आपकी टीचर्स डे के साथ?
1: हमारे यादें तो पूछो तो, को हम तो स्कूल में जब जाते थे
0: जी,
1: आई एम स्टडीड फ्रॉम 1962 टू 65 वी आर द मैट्रिकुलेशन।
0: ओह सुपर।
1: या तो हमारे पांच दोस्त थे, तो पांच दोस्त में दो तो उनको स्कॉलरशिप आ रहा बोल के डुम्मा नहीं मारते थे।
0: हाँ।
1: क्या बोलते, जब उनके पिताजी को बोलते, हेडमास्टर बुलाते, वो खत्म कर देते बोल के, स्कॉलरशिप नहीं आता रे मेरे को, तुम लोग जाओ बोलते थे। तो
0: okay.
1: मैं हमारे पिताजी को पैरालिसिस आया बोल के साइकिल लेके जा रहा था मैं स्कूल। तो साइकिल लेके जाके दीवार के बाजू में लगाते थे। जब क्या था, फर्स्ट पीरियड में टू डे मॉर्निंग और आफ्टरनून का एकदम इंटू मार्क डाल देते थे वो तो अटेंडेड बोल के।
0: ओके।
1: तो वैसा हाजिरी दे देना, साइकिल लेके सिनेमा को चले आना मॉर्निंग शो।
0: सुपर।
1: कभी एवरी डे, जब क्या था, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन ही दिन रहता था, संडे को जाने देते, ओनली फ्राइडे सैटरडे वी यूज्ड टू गो। जब क्या था, सेकेंड सैटरडे हॉलीडे रहता था स्कूल।
0: राइट।
1: ऐसा स्कूलों में ऐसा डुम्मे मारना, ये करना, स्कूलों पिक्चर देखना, दोस्तों को लेके जाना, बहुत ही हंगामा मजा करे। हम ज्योग्राफी में कोई भारत देश का मैप उतारे बोल के बोले तो मैं सबके किताबें देखता था कौन अच्छा उतारे। उन लोगों को साइकिल का एक चक्कर देते थे।
0: ओहो।
1: तो चक्कर दिए तो कुछ किसका अच्छा है उन्हें अपने उतार के देता था अपने को। तो ऐसा मजा करे, बहुत ही हंगामा। अरे दोस्त ना, अगले दिन एक 20 गर्ल्स रहते थे, एक 40 बच्चे रहते थे, स्कूल था। तो बहुत ही हंगामा, एंजॉय लॉट एनीथिंग। हमारे घर के पास जब भी ये बन रहा था, रेस कोर्स बन रहा था, तो संडे के टाइम पे जाना वहाँ पर, ये करना मिर्ची बज्जी कर लेना,
0: कहानी
1: लेना।
0: कहानी सुनाना तो आपसे सीखे कोई, क्योंकि
1: नहीं,
0: जैसे मैं बस सुन रही हूँ और आई एम लाइक इमेजिनिंग एवरीथिंग। ओके, रेस कोर्स, ओके खाना, ओके मिर्ची बज्जी, ओके ब्यूटीफुल श्रीनिवासराव सर, तुम्बा थैंक यू,
1: धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मां, धन्यवाद आपको भी, सब लोगों को भी धन्यवाद हमारा।
0: All right. Happy Teachers Day to each one of you who are listening to me right now. We have another caller right here, right now. Let's see who is on the line. All right. Hello, Rainbow. Okay. Hello, Rainbow. All right. I think the call got disconnected, but let me tell you something beautiful. Teachers Day. I used to dance on every Teachers Day. I learned classical dance from Padma Shri Shobha Naidu Garu and Pasumardi Seshu Babu Garu, and I also learned from Prasanna Rani Garu. All these are my dance teachers, and I've learned classical dance, Kuchipudi dance, and I used to dance every teacher's day. And if without my dance in my school, teacher's day hota hi nahi tha, matlab Jayashri ka dance hunna hi hunna hai. Proper classical dance karti thi main, like you know, गणेश, पंचरत्नम या दशावताराज, सम नाइस ब्यूटिफुल सॉन्ग आई यूज टू डांस फॉर एंड रियली रियली यूज टू एन्जॉय दैट। देन व्हाट हैपेंड वाज, बाद में ना देर स्टार्टेड लॉट ऑफ इनहिबिशन। बचपन में हम कुछ भी ऐसे ही कर देते थे बिना शर्म, यू नो, बिना ज़्यादा शर्माए, बिना एंड ऑल दैट। लेकिन उसके बाद कॉन्शियस हो जाते हैं हम, खुद को इन्जॉय करना बंद कर देते हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं हम किसी को बताना बंद कर देते हैं। यार दैट इज़ नॉट कूल। आई वॉन्ट यू टू बी दैट चाइल्ड लाइक, यू नो, गेट बैक दैट चाइल्ड लाइक फीलिंग, गेट बैक दैट चाइल्डिशनेस, एंड इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो एज कलर्स टू योर लाइफ।
2: ప్రధానమంత్రి సూక్ష్మ ఆహార ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పథకం. ఈ పథకంలో మొదటిగా వ్యక్తిగత సూక్ష్మ ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, ఎస్ఎస్జీస్, ఎఫ్పిఓలు, సహకార సంఘాలకు అర్హత గల ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో 35% క్రెడిట్ లింక్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ, ఒక్కో వ్యక్తిగత యూనిట్ కు 10 లక్షల గరిష్ట పరిమితితో మరియు కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రూప్ యూనిట్స్ కు 3 కోట్ల గరిష్ట పరిమితితో సహాయం అందించబడుతుంది. లబ్ధిదారుడు కనీసం 10% స్వయం పెట్టుబడి సమకూర్చుకోవాలి. పీఎంఎఫ్ఎంఈ అమలులో రాష్ట్ర స్థాయిలో తెలంగాణ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ నోడల్ ఏజెన్సీగా, జిల్లా స్థాయిలో డిఐసి, గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో సెర్ఫ్ మరియు మెప్మా, లబ్ధిదారు

0: शिक्षक था, एक कलाकार, लेखक, अधिकारी, सैनिक या पत्रकार। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई शिक्षक जरूर रहा है।
1: और कई बार शिक्षक वह व्यक्ति भी होता है जिसका नाम हमारी किताबों में नहीं लिखा होता। हमारी पहली भाषा सिखाने वाली माँ, अनुशासन सिखाने वाले पिता, सही और गलत का अंतर समझाने वाले कोई बुजुर्ग, किसी कठिन समय में हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति, ये सभी हमारे जीवन के शिक्षक हो सकते हैं।
0: इसीलिए आज शिक्षक दिवस पर हम केवल अपने विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापकों को ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हमारे जीवन में कोई अच्छी सीख छोड़ी।
1: तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी भावना के साथ करते हैं। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते,
0: गुरु जीवन को दिशा देते हैं।

0: तब और अब शिक्षक दिवस कैसे बदला?
1: आप सुन रहे हैं शिक्षक दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम, और अब बात करते हैं उस समय की जब शिक्षक दिवस आज की तरह नहीं मनाया जाता था।
0: आज शिक्षक दिवस आते ही विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हैं। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं भाषण, कहीं कार्ड्स और उपहार दिए जाते हैं। लेकिन कुछ दशक पहले शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते का स्वरूप कुछ अलग था।
1: उस समय संसाधन कम थे, लेकिन शिक्षक के प्रति सम्मान बहुत गहरा था। विद्यालयों में शिक्षक दिवस का आयोजन कई जगह बहुत सादगी से होता था। विद्यार्थी अपने शिक्षकों के लिए अपने हाथ से बनाए कार्ड्स लाते, फूल देते और धन्यवाद व्यक्त करते।
0: और एक खूबसूरत परंपरा यह भी रही है कि कई विद्यालयों में विद्यार्थी एक दिन के लिए शिक्षक की भूमिका निभाते थे। कक्षा में वही विद्यार्थी खड़े होते थे जो सामान्य दिनों में अपने शिक्षकों के सामने बैठकर पढ़ते थे। वे पाठ पढ़ाते, उपस्थिति लेते और समझते कि शिक्षक होना वास्तव में कितना बड़ा उत्तरदायित्व है।
1: आज समय बदल गया है। तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। स्मार्ट कक्षाएं हैं, डिजिटल बोर्ड है, ऑनलाइन शिक्षा है और ज्ञान प्राप्त करने के साधन पहले से कहीं अधिक है। लेकिन एक सवाल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्या तकनीक शिक्षा की जगह ले सकती है?
0: तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन क्या वह हमेशा ये समझ सकती है कि विद्यार्थी परेशान क्यों है? क्या वह पहचान सकती है कि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है? क्या वह विद्यार्थी के चेहरे को देखकर कह सकती है,
1: बेटा आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है?
0: यही शिक्षक की भूमिका सामने आती है।
1: शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझता है, उसकी कमियों को पहचानता है और उसकी क्षमताओं को सामने लाने का प्रयास करता है।
0: हाँ, आज शिक्षक दिवस मनाने का तरीका बदल गया है। पहले हाथ से बने कार्ड्स थे, अब डिजिटल संदेश है। पहले फूल दिए जाते थे, आज कई बार बड़े बड़े उपहार दिए जाते हैं। लेकिन शिक्षक दिवस की असली भावना नहीं बदलनी चाहिए, वो भावना है सम्मान।
1: क्योंकि शिक्षक को दिया गया सबसे बड़ा उपहार कोई महंगा सामान नहीं बल्कि विद्यार्थी की सफलता, उसका अच्छा व्यवहार और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी है।
0: एक विद्यार्थी जब वर्षों बाद अपने शिक्षक से मिलकर कहता है,
1: गुरुजी आपने मुझे उस दिन समझाया था, वो आज भी मेरे साथ है,
0: तो शायद एक शिक्षक को इससे बड़ा शिक्षक दिवस का उपहार कोई नहीं हो सकता।
1: समय बदलता रहेगा, शिक्षा के तरीके बदलेंगी, किताबें बदलेंगी, कक्षाएं बदलेंगी, लेकिन शिक्षक का महत्व हमेशा बना रहेगा।

0: क्या केवल स्कूल में पढ़ाने वाले ही शिक्षक हैं?
1: जयदीप, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, शिक्षक केवल वह नहीं जो कक्षा में पढ़ाता है।
0: बिल्कुल, और शायद शिक्षक दिवस पर हमें इसी सवाल पर सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए, क्या शिक्षक का मतलब केवल स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं?
1: अगर हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें, तो हमें कई ऐसे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया। हमने बोलना किससे सीखा, हमने चलना किससे सीखा, हमने पहली बार अच्छे संस्कार किससे सीखे?
0: हमारे माता पिता से। उन्होंने हमें पहली पाठशाला दी, उन्होंने किताब खोलकर शायद हमें कोई पाठ नहीं पढ़ाया, लेकिन अपने व्यवहार से बहुत कुछ सिखाया। माँ ने सिखाया दूसरों का ख्याल रखना, पिता ने सिखाया जिम्मेदारी निभाना, दादा दादी ने या नाना नानी ने सिखाया परंपरा और अनुभव की कीमत।
1: फिर जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे शिक्षक बन जाते हैं, भले ही उनके पास कोई कक्षा ना हो। किसी मित्र ने हमें कठिन समय में धैर्य रखना सिखाया, किसी वरिष्ठ ने काम के प्रति ईमानदारी सिखाई, किसी असफलता ने हमें दोबारा उठना सिखाया, और कभी कभी तो हमारी गलतियां भी हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है।
0: ऐसा कहा जाता है जीवन स्वयं एक शिक्षक है, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक का स्थान बिल्कुल विशेष है, क्योंकि वे केवल विषय का ज्ञान नहीं देते, वे सोचने का तरीका विकसित करते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को हर सवाल का उत्तर नहीं देता, वो उसे सवाल पूछना सिखाता है,
1: और यही शिक्षा की असली ताकत है। अच्छा शिक्षक कहता है,
0: तुम ये कर सकते हो।
1: कभी विद्यार्थी को खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन शिक्षक को उसकी क्षमता दिखाई देती है। कभी एक छोटी सी प्रशंसा विद्यार्थी का पूरा जीवन बदल देती है, और कभी शिक्षक की डांट भी वर्षों बाद समझ आती है कि उसमें नाराजगी नहीं, चिंता छिपी थी।
0: हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी अपने शिक्षक की कही हुई कोई बात याद होगी? शायद किसी ने कहा होगा,
1: हार मत मानना।
0: किसी ने ये कहा होगा,
1: मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
0: किसी ने यह भी कहा होगा,
1: अच्छे अंक से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान बनना। और किसी ने ये भी कहा होगा,
0: अब मार पड़ेगी।
1: और शायद वही शब्द आज हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए आज शिक्षक दिवस पर एक पल के लिए अपने उन सभी शिक्षकों को याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, उनकी आवाज याद कीजिए, उनकी वह सीख याद कीजिए जो आज भी आपके साथ चल रही है।

0: कि शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि उनके विद्यार्थी उन्हें याद रखे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनकी दी हुई सीख विद्यार्थी के व्यवहार में दिखाई दे,
1: और यही सच्ची शिक्षा है।

0: धन्यवाद हर उस शिक्षक को।
1: श्रोताओं, शिक्षक दिवस का यह विशेष कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन शिक्षक के बारे में बात कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है, एक स्मृति है, एक आवाज है, जो कई वर्षों बाद भी हमारे भीतर सुनाई देती है।
0: कभी वो आवाज कहती है,
1: ध्यान से पढ़ो,
0: कभी
1: गलतियों से सीखो,
0: फिर कभी
1: कोशिश करते रहो,
0: और कभी सिर्फ इतना,
1: मुझे तुम पर विश्वास है।
0: शायद उस समय हमें इन शब्दों की कीमत समझ नहीं आती,
1: लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमें एहसास होता है कि किसी शिक्षक का विश्वास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था।
0: आज हम उन शिक्षकों को धन्यवाद कहना चाहते हैं जो सुबह सबसे पहले विद्यालय पहुँचते हैं,
1: उन शिक्षकों को जो अपनी तैयारी करके कक्षा में आते हैं,
0: उन शिक्षकों को जो कमजोर विद्यार्थी को पीछे नहीं छोड़ते,
1: उन शिक्षकों को जो अपने विद्यार्थियों की सफलता में अपनी सफलता देखते हैं,
0: उन शिक्षकों को भी धन्यवाद जिन्होंने कभी हमें डांटा था,
1: क्योंकि शायद आज समझ आता है कि वो डांट हमारी भलाई के लिए थी।
0: उन शिक्षकों को धन्यवाद जिन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचाना जब हम खुद उसे पहचान नहीं पाए थे,
1: और उन शिक्षकों को भी धन्यवाद जिनसे हम आज दूर हैं, लेकिन उनके सीख आज भी हमारे पास है।
0: आज अगर आप किसी शिक्षक के संपर्क में हैं, तो केवल शिक्षक दिवस के संदेश तक सीमित मत रहिए।
1: एक बार फोन कीजिए और कहिए,
0: गुरुजी, आपने मुझे जो सिखाया उसके लिए धन्यवाद।
1: यकीन मानिए, ये कुछ शब्द किसी भी उपहार से ज्यादा मूल्यवान हो सकते हैं।
0: और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जो हमारे जीवन में बिना शिक्षक कहलाए शिक्षक बन गए।
1: माँ,
0: पिता,
1: दादा दादी,
0: भाई बहन,
1: मित्र,
0: वरिष्ठ
1: और स्वयं जीवन,
0: क्योंकि जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, और शायद शिक्षक दिवस का सबसे सुंदर संदेश यही है।
1: जिसने हमें ज्ञान दिया उसे सम्मान दे,
0: जिसने हमें संभाला उसे धन्यवाद दे,
1: और जिसने हमें बेहतर इंसान बनाया उसे कभी ना भूले।
0: डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाए जाने वाले इस शिक्षक दिवस के अवसर पर
1: हम देश के प्रत्येक शिक्षक को नमन करते हैं।
0: आपका ज्ञान, आपका धैर्य और आपकी मेहनत आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारती है।
1: सभी शिक्षक को
0: हमारी ओर से
1: शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफ एम रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: छोटा सा काम करे, जैसे कि किसी उदास चेहरे को मुस्कुराहट देने की कोशिश करे, किसी की बात को बगैर टोके मुकम्मल खामोशी और तवज्जा से सुने, रास्ते में किसी जरूरतमंद की, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, मदद करे। हमदर्दी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि कायनात का पूरा निजाम एक दूसरे की मदद और हमदर्दी पर टिका हुआ है। जैसे दरख्त दूसरों को साया और फल तो देते हैं और खुद धूप सहते हैं, दरिया अपनी प्यास खुद नहीं बुझाता बल्कि जमीन को सैराब करता है। अगर हर इंसान अपने दायरे में सिर्फ एक फर्द के साथ हमदर्दी का रवैया अपना ले तो पूरा समाज अमन और मोहब्बत का गहवारा बन सकता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि दुनिया में वही लोग अच्छे जो दूसरों के काम आते हैं। आइए हम भी अपने अंदर दूसरों के लिए तड़प, एहसास और हमदर्दी पैदा करें।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडां, फ्लाईओवरां और ब्रिजां बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चाला ना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां न को भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।
2: यकीनन दोस्तों, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हादसात से बचें और अपनी मंजिल मकसूद को पहुँचें।

अब पेश दोस्तों गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत। समय आज 5 सितंबर है और सारे मुल्क में यौम असातिज़ा जोश व खरोश के साथ स्कूल कॉलेजेस जामियात दीगर तालीमी इदारों में मनाया गया। वैसे दोस्तों यौम असातिज़ा टीचर्स डे सिर्फ एक रिवायती दिन नहीं बल्कि ख़ुद ये याद दिलाने का मौका है कि हमारी फिक्री शख्सी और हमारी कामयाबी के पीछे जिन हस्तियों की अनथक मेहनत और दुआ शामिल है वो असातिज़ा है। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा था, नहीं है ना उम्मीद इक़बाल अपनी कुछ तवीरां से, ज़रा हो ज़रा नम हो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ से साखी। इस ज़मीन को इल्म की रोशनी से शादाब करने वाले, जहनों को जिला बख्शने वाले और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाले हमारे असातिज़ा ये उस्ताद हैं। हिंदुस्तान में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाने की एक ख़ास और तारीखी वजह है। ये दिन आज़ाद हिंदुस्तान के लिए पहले नायब सदर और दूसरे सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यौम पैदाइश है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी ज़िंदगी के 40 से ज़ायद साल तालीमी मैदान और दर्स व तदरीस को वक्फ किया। वो मैसूर

कलकत्ता और ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर रहे। इनका मानना था कि तालीम सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं बल्कि इंसानी रूह को बेदार करने और सोच को वसअत देने का नाम है। जब आप 1962 में हिंदुस्तान के सदर बने तो इनके तलबा और खैरख्वाह ने इनसे गुजारिश की कि वो इनका जन्मदिन एक ख़ास तकरीब के तौर पर मनाना चाहते हैं। इस पर साबिक सदर ने जवाब दिया, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर इस दिन को यानी 5 सितंबर को मुल्क के तमाम असातिज़ा के नाम कर दिया जाए और इसे यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ और तोहफा होगा। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन को ये यकीन था कि मुल्क का फ्यूचर मुस्तकबिल क्लासरूम्स में तश्कील पाता है और बेहतरीन जहन वहीं बनते हैं जो तालीम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। उस्ताद वो शमा है जो ख़ुद पिघल कर दूसरों के लिए रास्ते को रोशन करती है और खाम मिट्टी को तराश कर एक ऐसा शाहकार बनाता है जो आगे चलकर मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। इसके अलावा अमली उस्ताद यानी ज़िंदगी में भी उस्ताद की बड़ी अहमियत होती है और काम की जगह इनको ट्रेनर या मेंटर कहा जाता है, जिनसे लोग काम सीखते हैं और अपने काम को कामयाबी से अंजाम देते हैं और हुनरमंद कहलाते हैं। इन्हें भी हमें याद करना चाहिए और इस मौके पर उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। आइए दोस्तों इसी पर सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म इम्तिहान से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तारे ज़मीं पर से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। इस हफ्ते को मनाने का बुनियादी मकसद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुतवाजन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट और दुरुस्त ग़िज़ाइत की अहमियत के बारे में आगही पैदा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग़िज़ाइत क्यों ज़रूरी है? हम जानते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन एक सेहतमंद जिस्म और फ़ाल जहन के लिए

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तारे ज़मीं पर से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। इस हफ्ते को मनाने का बुनियादी मकसद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुतवाजन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट और दुरुस्त ग़िज़ाइत की अहमियत के बारे में आगही पैदा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग़िज़ाइत क्यों ज़रूरी है? हम जानते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन एक सेहतमंद जिस्म और फ़ाल जहन के लिए सिर्फ़ पेट भरना काफ़ी नहीं, बल्कि जिस्म को सही मकदार में मख़वी अज़ा मिलना ज़रूरी है। बेहतरीन ग़िज़ाइत यानी हमारे दिफाई निज़ाम इम्यून सिस्टम को मज़बूत बना दी है, ताकि हम बीमारियों से बच सके। बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में अहम रोल अदा करती है। मुतवाजन ग़िज़ा खाना हमें ज़रूरी है। अपनी खुराक में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, रोटी या चावल पर इन्हेसार नहीं करना चाहिए, बल्कि दालें, सब्जियां, फल और प्रोटीन, अंडे, दूध या गोश्त शामिल करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिन भर में मुनासिब मकदार में पानी पीना जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। प्रोसेस फूड से परहेज़ करना हमें चाहिए, ताकि फास्ट फूड, ज़्यादा मीठी चीज़ों और कसरत से नमक से गुरेज करना चाहिए। मुकामी और मौसमी फल या गैर मुल्की चीज़ों के बजाय अपने इलाके की देसी और मौसमी सब्जियों और फलों को हमें तरजीह देना चाहिए। आइए इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक के मौके पर यह आज़म करें कि हम ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान और माशरे की ग़िज़ाई आदतों को बेहतर बनाएं। याद रखें, आज का सेहतमंद इंतखाब कल के रोशन और तवाना मुस्तकबिल की ज़मानत है। आइए दोस्तों, इसी पर सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म नायक से।

0: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं नैरंग प्रोग्राम, जिसमें हम पेश कर रहे हैं गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत। दोस्तों, आज इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाया जा रहा है। वैसे आज ज़िंदगी तेज़ रफ्तारी से गुजर रही है। इंसानी समाज ह्यूमन सोसाइटी में एक दूसरे को साथ लेकर चलने, साथ देने और इसके अलावा आगे बढ़ने का जज्बा जारी व सारी है। और इसके अलावा इंसानों ने कई अहम कारनामे भी अंजाम दिए हैं, जिनमें चैरिटी भी शामिल है। चैरिटी के माने दान, डोनेशन, अतिया, सहायता होता है। एक फर्द और एक इदारे दूसरों की फलाह के लिए जब काम करते हैं तो ये चैरिटी कहलाता है, ताकि लोगों की बेहतरी हो और उनकी ज़िंदगी में सुधार आए। आइए इस पर बात करते हैं। जब हम एक टीम बनकर किसी का सहारा बनते हैं या किसी का साथ देते हैं तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी दूर हो जाती है। मदद का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है। अकेला बंदा जल्द थक जाता है, लेकिन जब साथ मिल जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। आइए दोस्तों इसी पसंद है कि जिसको लिया है हमने फिल्म नया दौर से, आइए सुने।

फिल्म नया दौर से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी में एक किसी के पास अंधेरा और मायूसी होती है। आपका एक छोटा सा नेक काम, एक मुस्कुराहट या थोड़ा सा वक्त किसी की बुझी हुई उम्मीद को दोबारा रोशन कर सकता है। किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की शमा जला सकता है। ये सबसे बड़ी खिदमत है। आइए अपने दिलों में आशाएं जगाते हैं और सुनते हैं फिल्म इकबाल से लिया गया ये गीत।

फिल्म लगान से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, ज़िंदगी में पैशन यानी जुनून की बड़ी अहमियत होती है। ये जज्बा इंसान को कामयाबी से हमकिनार करवाता है। जब बात किसी की मदद करने की है और गिव बैक की है, तो सोसाइटी को कुछ देने या गिव बैक की हो, तो हमें चाहिए कि हम अपना मुकम्मल तआवुन करें और एक दूसरे की मदद करें, ताकि इससे माशरे में एक नई तब्दीली आए, बल्कि माशरा तरक्की की तरफ गामजन हो। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसको लिया है हमने फिल्म चकते इंडिया से।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म चक दे इंडिया से लिया क्या ये गीत। वैसे दोस्तों बहुत से लोग जिंदगी की इस तेज भाग दौड़ में थक जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं। अगर आपके पास इल्म है, गाइडेंस है, तो किसी गिरते हुए को रास्ता दिखाना और इसकी रहनुमाई करना और इसका हाथ पकड़ना और कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये एक लम्हा इंसान को ना सिर्फ उम्मीद से हमकिनार करता है बल्कि एक जोश इसमें भर देता है। आए सुनते हैं इसी पर एक गीत जिसको लिया है हमने डियर जिंदगी से।

फिल्म डियर जिंदगी से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या हम सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं। ऐसे में ये बात पेश नज़र रहें कि असली ज़िंदगी तो वो है जो दूसरों के काम आए। जब आप किसी ज़रूरतमंद का दुख बांटते हैं और इसके लबों पर मुस्कुराहट लाते हैं, तब आप सही मानों में इसके मददगार और खैरख्वाह कहलाते हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है अपने फिल्म कभी अलविदा ना कहना से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी अलविदा ना कहना से लिया गया ये गीत। कहते हैं कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि दुगनी हो जाती है। अपने वसाइल, अपना खाना, अपनी खुशियाँ जब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या बांटते हैं, तो इससे ज़िंदगी का असल लुत्फ़ आता है और ज़िंदगी में खुशियाँ कम होने के बजाय बढ़ जाती है। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसको लिया है हमने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आइए सुने।

फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से लिया गया ये गीत दोस्तों अभी आप सुन रहे थे। सामाइन अक्सर हम माशरे में देखते हैं कि लोग अपने माशरे पर मनफी ख्याल रखते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि तब्दीली की शुरुआत आपसे और मुझसे होती है। जब आपका एक अच्छा काम माशरे में, समाज में रोशनी फैलाता है तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है और एक नई तब्दीली, एक नई तरक्की, एक नई शुरुआत ये काम लेकर आता है। आइए सुनते हैं ऐसा एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म रंग दे बसंती से।

फिल्म रंग दे बसंती से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, अगर हम देखें कि किसी की मदद करने का जज्बा जब इंसान के अंदर उजागर होता है, तो वो ना सिर्फ दूसरे इंसानों से जुड़ता है बल्कि इनमें घुल मिल जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाना एक खूबसूरत लम्हा होता है। इनका बचपन संवारना, इनकी तालीम में मदद करना, ये वो सरमाया है जो कभी ज़ाय नहीं होता। आइए सुनते हैं ऐसा एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म बजरंगी भाईजान से।

फिल्म बजरंगी भाईजान से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, ज़िंदगी में मकसद यानी गोल की अहमियत होती है। हर इंसान चाहता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो और कामरान हो, लेकिन असल कामयाबी ये नहीं कि आप कितने आगे बढ़े और कामयाब हुए, बल्कि ये है कि आपने कितने लोगों को कामयाब होने का मौका दिया और उनका साथ दिया। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म यस बॉस से।

फिल्म यस बॉस से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, जब एक मुल्क के लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं, तो वो कौम कभी नहीं हारती। हमारी ताकत एक दूसरे की मदद करने में है और एक दूसरे का साथ देने में है, और इससे न सिर्फ दुनिया बेहतर जगह बनती है बल्कि माशरे में भाईचारगी को फ़र्ग मिलता है और एक तरक्की की फ़िज़ा चलती है। इससे न सिर्फ एक दूसरे के अंदर शुक्रगुजारी और इजहार तशक्कुर भी पैदा होता है। आइए सुनते हैं कि जिस गुलिया है हमने फिल्म डुप्लीकेट से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले का तेजा में कुछ सुरीले की, जिसमें हमने बात की टीचर्स डे, नेशनल न्यूट्रिशन वीक और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी पर। अब दोस्तों आइए सुनते हैं प्रोग्राम नारंग के आखिर में पयाम शब पेश कर रहे हैं सैदी।

0: दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहें, दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहें, दुनिया के मशवरों पे न जा, दुनिया के मशवरों पे न जा, उस गली में चल। जिंदगी में अक्सर लोग दूसरों के ताल्लुकात, मोहब्बत, दोस्ती और खैरख्वाही में दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के लोग अपनी राय और मशवरों से दिलों में शकूक व शुभात पैदा करते हैं, लेकिन हर मशवरा खैरख्वाही पर मबनी नहीं होता। अगर आपका रास्ता मोहब्बत, इखलास और सच्चाई का है तो लोगों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब न करो। दुनिया के कहने पर फासले पैदा करने के बजाय उस रास्ते पर चलो जहां मोहब्बत, वफा और दिलों का मिलाप हो। लोगों की बातों से ज्यादा अपने दिल की सच्चाई और अपने ताल्लुकात की हकीकत पर भरोसा करो। जो रास, जो रिश्ता मोहब्बत और इखलास पर कायम हो, उसे दूसरों के मशवरों की नजर ना होने दो।
1: इसी पैगाम शब के साथ दोस्तों, आज का नहरंग प्रोग्राम अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेमो 101.9 MHz पर। कुछ देर में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में किरण।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
4: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता

0: आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
0: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.

0: 44 44 23 310481 and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज शनिवार है। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2331-4444, दूसरा नंबर है 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। श्रोताओं, आज हमारे साथ चर्चा के लिए और आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम शरद।
2: धन्यवाद निखिल, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक। Sensex and Nifty falls around 1%. US stock market indices display mixed performance this week, and global crude oil prices surge over 9% during the week.
1: घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट का रुख। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% नीचे आए। अमरीकी शेयर बाजार में इस सप्ताह मिला जुला असर देखा गया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में इस सप्ताह के दौरान 9% से अधिक का उछाल।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार इस सप्ताह भी गिरावट दर्ज हुई. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सशक्त घरेलू आर्थिक आंकड़ों के असर को सीमित किया. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 750 अंक यानी 1% गिरकर 76,515 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 278 अंक यानी 1.1% नीचे आकर 23,898 पर पहुंच गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में इस सप्ताह मिड कैप सूचकांक 1.5% गिर गया, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक 20,187.80 के नए उच्च स्तर पर पहुंचा और अंत में लगभग सपाट कारोबार के साथ बंद हुआ. सेक्टर के हिसाब से देखें तो अगस्त में ऑटोमोबाइल की अच्छी बिक्री के बावजूद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 4% की गिरावट आई. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.6% नीचे आए, जबकि निफ्टी मीडिया, हेल्थ केयर और FMCG इंडेक्स में भी 2-2% की सुस्ती देखी गई. हालांकि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में इस सप्ताह 1% की बढ़त दर्ज हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में कमी आई. BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.4 लाख करोड़ रुपए घटकर 490 लाख करोड़ रुपए के स्तर से नीचे आ गया. फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपया इस सप्ताह 90 पैसे मजबूत हुआ और अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.49 रुपए पर बंद हुआ. और इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे आज के पहले श्रोता परिमल जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर. परिमल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए.
2: जी नमस्कार, मार्केट मंत्र सभी टीम को नमस्कार और एक्सपर्ट को भी नमस्कार.
3: नमस्कार,
2: मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये किसान को लेके. जैसे कि बॉम्बे में थाने में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगभग 30 ईयर्स हो गए मैं रह रहा हूँ
3: जी.
2: और मेरा नेटिव प्लेस है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सिंगूर टाटा नैनो हुआ था. तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि अभी वहाँ पे किसान को, जो हम लोग किसान को जो गवर्नमेंट का स्कीम है आय दुगना करने के लिए, ये जो स्कीम चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 30-40 ईयर्स मेरा, मतलब मैं देख के आ रहा हूँ, मेरा पिताजी भी किसान ही थे. तो अभी वहां पे 3 रुपए पर किलो भी पोटैटो बिकता नहीं है, और महाराष्ट्र में हम लोग यह 25-30 रुपीज पर किलो हम लोग खाते हैं, इधर बॉम्बे में परचेज करते हैं. तो इतना डिफरेंस क्यों होता है, और ये प्रॉब्लम होने से किस तरीके से गवर्नमेंट

0: मतलब किसान का आय दुगना होगा, क्योंकि इससे मेरा मेरा एक ओपिनियन भी इसमें है कि गवर्नमेंट इसमें जो रेल ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कॉस्ट भी कम हो और एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान भी आसान से लेके आ पाए, इससे किसान का जो मेहनत किया हुआ जो फल है ना उसको ऑटोमेटिकली उसको खुद का मेहनत से मिल जाए, ना कि गवर्नमेंट को एवरी ईयर में उसको 10,000, 6,000, 8,000, 10,000 देने से अच्छा उसको एक रास्ता दिया जाए।
1: परिमल जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है पिछले कई सालों में, आपने ठीक कहा। देखिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार प्रतिबद्ध है, बहुत से राज्यों में बढ़ी भी है, और किसान सम्मान निधि जो इंट्रोड्यूस किया गया वो भी इसीलिए किया गया। आपका जो एक सवाल का हिस्सा है वो बहुत ही काम का है, और मैं भी अक्सर इसको कहता हूं कि किसान कम कीमत लेकर परेशान होता है और ग्राहक जो है वो महंगी कीमत लेके परेशान होते हैं। तो बीच में जो तंत्र है, बीच में पूरा सिस्टम है, और मैं राजेश और निखिल की भी इसमें इसमें इजाजत चाहूंगा कि बीच में जो तंत्र है, जो बिचौलिए हैं इसमें परिमल, वो कहीं लाभ उठा जाते हैं। तो मुझे लगता है किसानों को सीधा हमें एपीएमसी से जोड़ना और मंडी मंडी समितियों को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जिससे बीच में जो आड़ती हैं, जो बीच में जो लोग हैं जो मुनाफा बीच में कमाते हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, इतनी लंबी परिमल बीच में चेंज है कि वो 3 रुपए की चीज 25-30 रुपए की ग्राहक के हाथ तक पहुंचती पहुंचती हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे इन बिचौलियों को, और सरकार जब किसान के संबंधित बिल लेकर आई थी तो सरकार की मंशा रही थी यही थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो बिल पास नहीं हो पाए, पर अगर वो बिल पास होते तो शायद आज हम कुछ और परिस्थिति देख रहे होते। पर सरकार मुझे लगता है प्रतिबद्ध है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और किसानों को भी मैं सलाह देना चाहूंगा परिमल, आप भी किसानों को बोलिए कि कोशिश करें कि बिचौलियों के ज्यादा वो उसमें घेरे में ना आए और सीधा मंडी समिति तक या सीधा जहां पर उसको एक्चुअल रिटेल होता है वहां तक, जितने बिचौलियों की चेन कम होगी मुझे लगता है उतना किसान का मुनाफा हो सकता है।
2: From Bengaluru, we are joined in by NR Prasad. A warm welcome, Mr. Prasad.
3: Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Good evening, Rajesh Ji. Hello, Nikhil.
2: Hello.
3: Taraj Ji, good evening, sir.
1: Good evening.
3: Just one question, but it has got a two subdivision questions.
1: Yeah.
3: Sir, I hold a large, mid, and a small caps.
1: Yeah.
3: Whenever I book the profit, there are two things here.
1: Yeah.
3: What is the percentage to be sold? And what is the percentage of profit to be made? And generally, what I do when I do the profit booking, minimum of I beat the inflation of 5-6%, and another 8-10, 12-14, whatever the available on that day. So that is the percentage of profit I book. How much to sell? That percentage of how much to sell, if it is a large cap or if it is a small cap, how much to hold and how much to sell. These are my two sub questions, sir.
1: Well, I got your question, Mr. Prasad. It's a very subjective question, because I need to, because we don't name here the, you know, the large cap and mid cap funds which you're holding. So unless we know the name, it's very hard for me to predict that how much more you're going to make profit on this. That's a $1 billion question, that where do you stand today? How long have you been holding? But I would suggest that, you know, I follow a principle called profit in the bank is better than profit in the books. So if you are getting a decent amount of profit, I would suggest you should book, because the markets, the way they have been behaving over the last couple of years, it's been a roller coaster ride. And I was looking at the Nifty returns, you know, over the last 2 years, literally Nifty has not given any returns, if I talk of the 50 bunch of Nifty. So I think if you are getting, Mr. Prasad, a decent amount of profit, I would advise you to book maximum of that, because the geopolitical situation, Mr. Prasad, and the geoeconomic situation at this point of time is very, very fragile. And the way things are going in West Asia, the way things are going, you know, in terms of Strait of Hormuz, crude oil prices, things are looking very, very uncertain. So booking little more profit than what you actually do would not be a bad idea. However, I would like to qualify my answer here that a very specific can only be made out after I know the names of funds, which we don't do here. So therefore, but a general opinion which I personally believe in is that try and book profits. If you are in profits, you can always re-enter. If the market corrects, you can always re-enter. So this is not the end of the story, that once you book the profits, you're just, it's over and done. well, you can look for opportunities to re-enter, but for once, I

0: जानकारी है सर, धन्यवाद।
1: देखिए अमित, पहले तो ये हमें समझना होगा कि हम सेमीकंडक्टर में कुछ समय पहले तक थे ही नहीं, हमारा कहीं नाम ही नहीं था। भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया जब सेमीकॉन 1.0 आया, उसके बाद जब कुछ और यूनिट्स की परिकल्पना करी गई, प्राइवेट सेक्टर आया, सरकार ने सपोर्ट दिया, सरकार ने स्कीम निकाली, उसके बाद हम सेमीकॉन 2.0 पर आए जहां पर सरकार ने उसको और इंप्रूव किया। इस समय मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 6 से 7 यूनिट्स आपको इस साल भारत से सेमीकंडक्टर्स के कुछ निकलते हुए भी दिखेंगे और 6 से 7 यूनिट्स टोटल इन दी प्रोसेस है। तो मुझे लगता है हमारी हिस्सेदारी भले ही अभी 0.1% हो, पर क्योंकि अभी सारे यूनिट्स इंस्टॉलेशन स्टेज पर है, अपने जेस्टेशन पीरियड में है, जैसे ही यूनिट्स इंस्टॉल हो जाएंगे और 1-2 साल के अंदर फंक्शनल हो जाएंगे, आपको सारे यूनिट्स सामान बेचते हुए दिखेंगे। तो आई थिंक आई कॉल दिस अमित एज वर्क इन प्रोग्रेस। उस परिस्थिति से हम आज बहुत अच्छे हैं, जब हमारे यहाँ सेमी कंडक्टर बनाने का तो छोड़िए, फैक्ट्री लगाने का तो छोड़िए, यहाँ पर बात ही नहीं होती थी, हम तो आंख बंद कर इंपोर्ट करते थे। ये सही है कि आज भी इंपोर्ट करें क्योंकि अभी हमारी इतनी प्रोडक्शन यहां शुरू नहीं हुई है, पर आपको मैं एक आश्वासन दे सकता हूं कि भारत सेमीकंडक्टर में बहुत आगे जाने वाला है और हम ना केवल अपनी घरेलू जरूरतें इससे पूरी करेंगे बल्कि हम दुनिया के लिए बहुत बड़े एक्सपोर्टर निकल के आएंगे। अमित, यह ध्यान रखना चाहिए, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं कि सेमीकंडक्टर का जो प्लांट होता है जिसको चिप हम बोलते हैं, उसको सेटअप करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, तो समय लगता है। असहज पके सो मीठा होए, किसी ने कहावत बोली है, तो मुझे लग रहा है आप 1-2 साल और इंतजार करिए, अगले साल इसी समय इस प्रश्न को फिर करिएगा, तब इस परिस्थिति का हम आकलन करके और आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा। जी,
2: फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय कैप्टन जगमल, अ वार्म वेलकम कैप्टन।
3: हां सर
2: जी,
3: सर मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार, कोहली साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार कैप्टन साहब।
3: सर मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी ये सवाल पूछा था लेकिन वो बीच में रह गया था आधा
1: जी।
3: मैंने वो 2013 में एक 46 लाख की कोई प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदा था
1: जी,
3: वो भी बैंक से, डिफॉल्टर्स का होता ना ऑप्शन
1: जी, जी, जी।
3: उसमें जी। पूरा सब अच्छा, और अभी मैंने मुझे बिका वो 38 लाख का।
1: अच्छा,
3: मुश्किल तो उसमें जब हमने वो रिटर्न भरी
1: जी।
3: हेलो
1: जी जी जी,
3: हाँ जी, रिटर्न भरी तो उसमें वो कैपिटल लॉस वो पुराने फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर रहा है, और मैंने गूगल वगैरह में देखा, मैंने थोड़ा आपको याद आया होगा मैंने बात करी थी आपसे
1: जी,
3: तो
1: जी।
3: वो कह रहे गवर्नमेंट ने 2023 में
1: जी
3: 24 जुलाई को उसमें थोड़ा सा कोई ट्विस्ट कर दिया कि कैपिटल गेन तो आपको पुराने फॉर्मूले से मिलेगा लेकिन कैपिटल लॉस वो केवल जो
1: जी
3: सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस है
1: जी
3: उसका डिफरेंस मिलेगा
1: जी जी जी,
3: जो कभी कहीं 80 लाख के करीब लॉस बन था वो करीब 8 लाख के करीब वो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है उसमें
1: जी जी जी।
3: अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने जुलाई में रिटर्न भरी थी
1: जी,
3: उसके साथ जो मेरी फैमिली की बाकी रिटर्न भरी थी उनका सबका वो आ गया फाइनल, पर रिफंड भी आ गया
1: जी,
3: ये जब से अब से उन्होंने होल्ड की हुई है
1: जी जी
3: उसमें भी।
1: चलिए कैप्टन साहब, आपने जो बात करी ये आप ये जिस का जिक्र कर रहे हैं निखिल राजेश, ये ग्रैंड फादरिंग पोजीशन प्रोविजन लाए थे क्योंकि एक डेट से ये जो जब से 12.5% किया टैक्स पेयर को ऑप्शन दी गई, पुरानी प्रॉपर्टीज पे आप इंडेक्सेशन लेके या विदाउट इंडेक्सेशन लेके आप कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लॉस को ऐसे ले रहा है क्योंकि प्रॉफिट में क्या है कि कैप्टन साहब वो आपको दो ऑप्शंस देता है कि आप इंडेक्सेशन लीजिए या आप 12.5% इंडेक्सेशन लेके आप 20% देंगे, पर अगर आप इंडेक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो वो 12.5% सीधा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करता है, परंतु ये लॉस में ऐसा नहीं है। जब आप लॉस है तो लॉस सीधा सीधा आप इसको, क्योंकि आपका 8 लाख का सीधा लॉस दिख रहा है तो वो लॉस उस तरीके से नहीं सीधा इसमें कैलकुलेट करा जाएगा, बिल्कुल 8 लाख जो दिख रहा है आपको वो इस समय सही दिखाई दे रहा है, इसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करिए या आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि अभी तक आपका प्रोसेस होकर नहीं आया, तो जो नॉर्मली कैप्टन साहब ने देखा है जो जिन रिटर्न्स में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है उनमें प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लगता है, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, बाकी की आपकी घर की जो रिटर्न्स हैं वो सिंपल रिटर्न्स होंगी, तो ये भी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका इंतजार करिए। अभी तो आपने जुलाई में फाइल ही किया है, अभी तो हम मुश्किल से 1.25 महीना ही वहां से चलकर आए हैं, तो आई थिंक बाय अक्टूबर नवंबर आप तक, और दिसंबर से पहले तो पक्का ही आ जाएगा, तो क्योंकि आपकी कैपिटल लॉस है इसलिए थोड़ा सा डिले दिख रहा है, बाकी प्रोसेस जो कैलकुलेशन दिखा रहा है वो मुझे सही नजर आ रही है जी।
4: भिलाई से रवि हमारे

0: है रवि जी, आपका प्रश्न क्या है? नमस्ते।
1: नमस्ते शरत सर, नमस्ते।
0: नमस्ते रवि जी।
1: अभी एक मिस्टर प्रसाद के जवाब से क्यों लेते हुए पूछ रहा हूँ,
0: जी
1: प्रॉफिट बुकिंग वाली बात पे, कि
0: जी
1: मेरा जो है म्यूचुअल फंड पे मैं करीब 2018 से जो है SIP करते जा रहा हूँ,
0: जी
1: और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग डबल से थोड़ा सा ऊपर ही है अभी,
0: अच्छा,
1: और मुझे फंड्स की कोई भी जरूरत नहीं है अभी,
0: जी
1: और मैं ये SIP कंटिन्यू करके रखूंगा,
0: जी
1: तो क्या मुझे भी प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए कि मैं रख छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि शायद रखूंगा तो री इन्वेस्ट होता रहेगा, तो और मतलब उसका प्रोग्रेशन अच्छा रहेगा बढ़ने का।
0: रवि, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत ही काम का सवाल है। मुझे लगता है बहुत लोगों का ही होगा। अभी मैं यहाँ सलाह दूंगा कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करते चलिए, क्योंकि आपने कहा आपका डबल से ज्यादा हो गया है। आप आगे कंट्रीब्यूट करते रहिए, पर पीछे जो प्रॉफिट हुआ है, आई थिंक जो अभी मैंने प्रसाद साहब को बोला था, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। क्योंकि मार्केट जो है बहुत चैलेंजिंग, आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 साल से अब बहुत चैलेंज थ्रो कर रही है। आई मीन आई होप कि आपने जहां जिस फंड में किया हुआ है वो बहुत अच्छा फंड है, उसने अच्छे रिटर्न्स दिए, पर मार्केट जो पीछे कर रही है कोई गारंटी नहीं होती वो आगे करे, और जो आगे होने वाला होता है ये जरूरी नहीं कि पीछे ऐसा हुआ हो। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आप एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो मैं सलाह दूंगा कम से कम आधे का आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी के आधे में बने रहिए और आगे करते रहिए। आप देखिए, फिर वही बात आती है जो मैंने मिस्टर प्रसाद को कहा था, आप सुन रहे थे, कि बहुत स्पेसिफिक जवाब तो जब ही दिया जा सकता है जब हम यहाँ फंड्स के नाम ले, कौन से सेक्टर के हैं, सेक्टर स्पेसिफिक है, या आपने कोई हाइब्रिड लिया हुआ है, या आपने कोई लिक्विड फंड लिया हुआ है, कौन से फंड आपने लिए हुए हैं, डिफेंस में है कि FMCG में है, फंड्स के नाम क्या है, तो बाकी डिटेल्स
1: The
0: तो
1: question is that once he books the profit, what should he do with that amount? Should he put it in FD? What should he do?
0: मुझे लगता है कि आई थिंक राजेश, व्हाट रवि शुड डू इज के अगर प्रॉफिट जब आप बुक करेंगे तो सवाल यह है कि पैसे का करें क्या, ये भी एक समस्या बन जाती है। लोग तो पैसे कहते हैं पैसे है नहीं। आई थिंक आई वुड सजेस्ट, यू नो, यू कैन प्रोबेबली लुक एट सम गोल्ड ETFs एंड सिल्वर ETFs, ऑल्दो यू मस्ट पे अटेंशन टू द डिस्क्लेमर विच राजेश रेड इन द बिगनिंग, दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइस शुड बी टेकन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बट इफ आई वॉज यू रवि, I would have put some in gold and silver ETFs because it is giving you opportunities, and I feel the long-term growth prospects are looking very good. So some you can keep liquid in your FDs and all that, but maybe you don't need funds. But be very watchful. मुझे लगता है ये जो समय है ना रवि, ये पैसे, कुछ पैसे को कई बार नहीं इन्वेस्ट करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसको रख के थोड़ा वॉचफुल रहिए। यहां से नवंबर तक, जब तक अमेरिका में मिड टर्म पोल है, काफी उतार चढ़ाव मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं, बहुत रोलर कोस्टर टाइप राइड दिख रही है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करिए
1: So what if
0: कुछ।
1: he maintains this status quo?
0: वेल, व्हाई आई सजेस्टेड हिम टू बुक प्रॉफिट इज बिकॉज इन केस मार्केट टेक्स अनदर शॉकर और इनकी कुछ NAV नीचे आ जाती है, तो इन्होंने जो अभी तक डबल हो रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है और अच्छा प्रॉफिट है, रवि मैं मानता हूं डबल होना एक अच्छा प्रॉफिट है, तो उसको कुछ बुक करिए। हो सकता है कम हो गया राजेश, तो फिर मैं देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि रवि का जो है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है वो चला

0: क्या इसके ऊपर जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन होगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन होगा जी।
0: हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि निफ्टी के लिए क्या रहेंगे एक्सपर्ट दो तीन साल में? कहीं सुनने में यहाँ तक ये 25,000 के लाख तक चला जाएगा
1: जी। जी जी, चलिए पहला आपका ब्रिक्स से संबंधित है। ब्रिक्स पे जो मुझे एजेंडा रहने वाला है, यू नो राजेश, आई थिंक निखिल भी अग्री करेंगे, डिफेंस ये जो युद्ध चल रहे हैं इन पे चर्चा तो अनिवार्य है, मुझे लगता है होगी ही होगी, क्योंकि ब्रिक्स या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि शांति, विश्व शांति बनी रहे। इसके अलावा ट्रेड पर, डिफेंस पर, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर और कुछ कल्चरल बात भी होगी। म्यूचुअल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत में, भारत उसके ऊपर भी चर्चा होगी। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ब्राजील के साथ चर्चा हो सकती है। रशिया से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर चर्चा हो सकती है। चाइना आई थिंक डिस्कस करना चाहेगा, जो ब्लॉकेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई हुई है उसके लिए चाहेगा कि ब्रिक्स एक डिक्लेरेशन दे के भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना चाहिए, चाहे वो ईरान की तरफ इशारा हो, अमेरिका की तरफ इशारा हो, खुलना चाहिए दुनिया का ट्रेड नॉर्मल, और ये जो ट्रेड एम्बार्गोस लगाए जा रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ये सब चर्चा होगी। और मुझे लग रहा है दबी आवाज में या शायद अनऑफिशियली डिक्लेरेशन ना, एक ब्रिक्स करेंसी के ऊपर मुझे लगता है कहीं पर शायद एक बैकडोर डिस्कशन होगा, क्योंकि डॉलर ने जिस प्रकार से दुनिया में थोड़ी सी हलचल मचाई हुई है और डॉलर की वजह से बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित है। मुझे नहीं पता ऑफिशियली को डिक्लेयर, क्योंकि पिछली ब्रिक्स समिट में जब डॉलर पे चिंतन हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी उखड़ गए थे, नाराज हुए थे, तो अब उनको नाराज तो कोई करना नहीं चाहेगा सीधे तौर पर। तो ये सब चर्चाएं होने की उम्मीद है। निफ्टी आपने पूछा दो तीन साल में, मुझे लग रहा है दो तीन साल में तो प्रॉस्पेक्ट बुरे नहीं है, पर थोड़ी सी सतपाल जी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको लेके मैं आजकल विशेष चिंतित हूं। पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा चिंतित हूं या सिचुएशन ऐसी बन रही है, क्योंकि रशिया नेटो के बीच में युद्ध और घमासान हो गया है, ईरान यूएस का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो ये थोड़ा सा इस पर नजर बना के रखिए, संभल के चलने का वक्त है ऐसा मुझे लगता है।
2: Moving on, Wall Street ended lower yesterday as hotter than expected employment data fueled concerns over a possible rate hike. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. For the week, Nasdaq rose 0.4%, S&P 500 eked out 0.1% gain, while Dow dropped 0.3%. On the economic front, total non-farm payroll employment increased by 1,62,000 in August, while the unemployment rate remained unchanged at 4.1%, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. Sharad, a possible rate hike?
1: Well, the Truth Social post made by President Trump about Fed to, threatening that they should not increase the interest rates, else he's going to stop trading with the countries on which the U.S. runs deficit. I have my doubts, although the economic principle-based assessment says yes. But somehow I feel that it just may not be done, looking at the political situation in America at this point of time.
2: Okay. Global crude oil prices rose sharply over the week as disruptions around the Strait of Hormuz entered their seventh month, driving up the geopolitical risk premium in global energy markets. During the week, Brent crude November futures surged by 9.3% to settle at $96.28 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 9.7% to end at $91.48 per barrel. Since we're talking about crude, which is one of the reasons why, despite strong domestic economic data, our domestic equity indices declined for the fourth consecutive week. What could be on the anvil?
1: I think the markets are looking outwards. The markets are overpowered or overwhelmed by the crude oil prices, Iran, US tensions, dollar index, bond yields. So the markets somehow are just forgetting that the country is doing great guns. We've got 7.8% GDP. So the markets start looking inwards, they'll be happy. But the markets are looking outwards, which I think this is something which is beyond anybody's control. I hope the operators and traders are listening to us and they better start looking inwards.
3: दिल्ली से हमारे आज के अगले श्रोता हैं जय किशन
4: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
4: मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी एज 82 ईयर है और आई एम ए टोटल ब्लाइंड। मैंने भी 5 साल पहले होम लोन लिया था 25 लाख रुपए का।

0: जी
1: एचडीएफसी बैंक से।
0: जी
1: अब उन्होंने एक 10 साल के लिए एक किस्त रेगुलर बांध दी कि 28,000 रुपए पर मंथ आपको जमा कराना है।
0: जी
1: कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल से मैं जमा करा रहा हूँ साहब।
0: जी
1: ये जो मेरा पेमेंट है वो ब्याज में जमा हो रहा है।
0: जी
1: अब पहले स्टेट बैंक से ये होता था कि भाई जो आप किस्त जमा कराई 28,000 रुपए की, पहले महीने आपने 56,000 जमा हुए तो उसका ब्याज कम हो जाता था।
0: जी
1: लेकिन अब ये 10 साल तक मेरा अगर ब्याज में सारा पैसा कैपिटल जाता रहेगा तो फिर एंड के अंदर जो है मेरे को कैसे फायदा होगा? ये कठुआ ब्याज तो लगा नहीं मेरे ऊपर, नहीं तो ये तो 24% से भी उसका ब्याज लगता है साहब। तो कृपया ये बताए कि मुझे नुकसान होगा या मुझे फायदा होगा एंड में जमा कराने के बाद।
0: प्रेम जी जी, पहले तो हमारा भी आपको सादर प्रणाम। आपकी बात ठीक है और ये हाउसिंग लोन की एक टिपिकल प्रॉब्लम है निखिल राजेश, के शुरू में वो ब्याज लेते रहते हैं। मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है तो शुरू के सालों में वो ब्याज लेते हैं, और जो बात की प्रेम जी जी जो किस्त होती है आखिर की, उनमें आप तो आप अगर एक किस्त को देखेंगे तो उसमें ब्याज का कंपोनेंट ज्यादा होगा शुरू में, और प्रिंस अजय किशन जी क्षमा चाहता हूं, तो उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट एंड में कम होगा, पर शुरू में इंटरेस्ट का ज्यादा होगा और प्रिंसिपल का बहुत कम होगा। तो ये एक टिपिकल जयकिशन जी तरीका है इन लोगों का रीपेमेंट लेने का। आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद नहीं है, पर उनकी उनकी मंशा ये होती है कि लोग लोन लेके कई दफे बहुत जल्दी वापस कर देते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो जल्दी वापस लोन कर रहा है उसको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि आप तो उनके लिए ग्राहक हैं, उनको लोन में से प्रॉफिट कमाना है, तो वो चाहते हैं कि लंबे वक्त तक आप बने रहें। तो शुरू में वापस करेंगे तो आपका घाटा है, क्योंकि आप पूरा वापस कर देंगे जो दिया होगा वो सब ब्याज में चला जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि बिल्कुल जब एंड आने लगता है, लास्ट के 3-4 साल होते हैं, तो उल्टा हो जाता है, आपका प्रिंसिपल ज्यादा जाएगा और ब्याज कम जाएगा। बदकिस्मती से जयकिशन जी ऐसा ही है। मैं चाहूंगा आप एक बार मिल ले बैंक से, हो सकता है आपकी आपकी जो कंडीशन है उसको देख के शायद वो कुछ आपको रिवाइज करना चाहे आपकी किस्त वगैरह।
2: जी दिल्ली से प्रेमजीत जी हमारे साथ है। प्रेमजीत जी बहुत जल्दी से आपका सवाल पूछिए।
3: सर आप सब लोग को हार्दिक बधाई, और गुरुदेव मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि सर आपको सुन के लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं।
0: अच्छा,
3: और जैसे आप मेरा दुर्माचार्य हैं, मैं आपका अर्जुन हूँ, अब लोग ये पूछने लगे हैं सर कि क्या गोल्ड और सिल्वर भी मतलब ब्लैकआउट हो सकता है क्या सर?
0: ब्लैकआउट हो सकता है? ब्लैकआउट का मैं अर्थ नहीं समझ पाया। ब्लैकआउट का मतलब कि लोगों को मिलना खरीदना बंद हो जाए? नहीं, ऐसा तो प्रेमजीत जी कभी नहीं हुआ, ना हमने किसी कार्यक्रम में इस प्रकार से बोला है ब्लैकआउट हो जाता है। कहीं इन्होंने ये सुना होगा कि आगे विश्व युद्ध होता है तो टेक्नोलॉजी प्रभावित होगी, उसकी वजह से सर्विस
2: कमोडिटी तो नहीं होगी
0: सब, पर कमोडिटी जो हार्ड फॉर्म में है गोल्ड सिल्वर, बल्कि वो तो ज्यादा सुरक्षित मैं उसको मानता हूं। और कोई कंफ्यूज नहीं हुए प्रेमजीत जी? कोई कभी कंफ्यूज करने का तो मार्केट मंत्रा का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी शंका निवारण होगी।
2: शरद जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया,
4: थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी फॉल्स अराउंड 1%। यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस डिस्प्ले मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिस वीक, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज ओवर 9% ड्यूरिंग द वीक। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट।
1: नमस्कार, मैं हूँ निखिल कुमार। श्रोताओं, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस। आज इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों का चयन किया गया था। इनमें 48 स्कूली शिक्षक, 21 उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के

0: शिक्षक तथा 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक की भूमिका को व्यापक संदर्भ में रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति स्वयं भी शिक्षिका रह चुकी हैं और उन्होंने अपने शिक्षक जीवन की स्मृतियों को भी साझा किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति को।
1: देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है।
0: श्रोताओं, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की यात्रा में कई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को समाज में बदलाव का माध्यम बनाया। इनमें सावित्री बाई फुले का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे समय में लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज में अनेक बाधाएं थीं। इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा को केवल किताबों और कक्षा की सीमाओं तक नहीं देखा। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति, कला, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को शिक्षा का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में शिक्षा के एक क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद किया। आइए सुनते हैं उनका ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ।
0: श्रोताओं, भारत अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया की स्किल कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा, कौशल और नवाचार को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को भविष्य का निर्माता बताते हुए भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के लक्ष्य से शिक्षा को जोड़ने पर जोर दिया।
1: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियाँ पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: श्रोताओं, बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके सीखने, व्यवहार और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और कौशल जीवन में कभी भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में अच्छे आचरण तथा मूल्यों को विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोड़ से सीखने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और

0: भौतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्य निष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रमों भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं।
1: श्रोताओं, प्राथमिक शिक्षा मजबूत होने का अर्थ केवल ये नहीं कि ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे, इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को लागू करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
0: संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत की झलकियां सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनके व्यवहार और रोजमर्रा के जीवन में होने वाले बदलावों को भी समझना चाहिए। बदलती पारिवारिक संरचना के बीच बच्चों के साथ शिक्षक का संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में नशे की समस्या को लेकर भी शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनका कहना था कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो शिक्षक को उसके कारणों को समझने और बच्चों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, आज एक और चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम की है। मोबाइल और डिजिटल उपकरण शिक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक और रचनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ इस विषय पर बातचीत करने और बच्चों को खेल, शारीरिक गतिविधियों तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षकों की बातचीत के कुछ अंश।
2: परमात्मा ने हरेक को कोई कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग?
3: बहुत सारी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट वही हमारी कोशिश होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे विद्यालय में यानी हमारे कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी में अलग अलग खूबी है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चैलेंज है। और एक शिक्षक के नाते मैं उन सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने किया है।
4: आपने एकलव्य खोल करके एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि लगभग मेरे हिसाब से उतने गुने परिवार को जोड़ा। जो परिवार फर्स्ट जनरेशन लर्नर है आज के दिन में, वो कभी स्कूल नहीं देखे, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ से आईआईटी का सपना देख रहे हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची पर नजर डालें तो अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिक्षकों की कहानियों में एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के नए

0: नए तरीके तलाशे हैं। आइए पुरस्कार विजेताओं के योगदान को विस्तार से समझते हैं।
1: राजस्थान के सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन ने ग्रामीण विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ते हुए उनके क्षुद्र ग्रहों की पहचान और खोज से जुड़े कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कम लागत वाले तकनीकी समाधान भी विकसित किए, जिनमें AI आधारित जीव विज्ञान शिक्षण मॉडल, डिजिटल बायोलॉजी लैब और पेड़ों के बारे में QR कोड आधारित सीखने की व्यवस्था शामिल है। हरियाणा के अनिल कौशिक ने गणित को आसान और रोचक बनाने के लिए

0: आधुनिक मैथ्स लैब तैयार की। इसमें 40 से अधिक शिक्षण मॉडल और डिजिटल गणित प्रयोगशाला भी शामिल है। उन्होंने वैदिक गणित पर पाठ्यपुस्तकों में योगदान दिया और दीक्षा पोर्टल के लिए भी शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए। इनके योगदान के लिए इन्हें मैथ विजार्ड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने गणित और विज्ञान को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। वे मूंगफली के जरिए बीज गणित और पतंगों के माध्यम से ज्यामिति जैसे विषयों को समझाती हैं। उनका प्रश्नों से विज्ञान मॉडल रटने की जगह बच्चों को सवाल पूछने और खुद उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करता है। ओडिशा के पदाराज उमाकांत नायक ने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाने के बजाय उन्हें चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने 50 से अधिक प्रोटोटाइप तैयार किए, जिनमें कम लागत वाली स्वचालित प्लेट धोने की मशीन भी शामिल है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला। शिक्षा का असर केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहता, इसका उदाहरण असम के शिक्षक राजेश बरदोलोई का काम भी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को घर जाकर अपनी उन माताओं को पढ़ाने का काम दिया जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ स्मार्टफोन और यूपीआई के इस्तेमाल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को भी शामिल किया गया, यानी कक्षा की शिक्षा परिवार और समुदाय तक पहुंची। महाराष्ट्र की डॉक्टर कविता नरसिंह राव गिट्टे ने प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक काम किया। वहीं खेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। गोवा के महादेव हनुमंत शिंदे का काम विशेष जरूरतों वाले बच्चों और खेलों के बीच संबंध का उदाहरण है। उन्होंने विशेष ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया और भारतीय फ्लोर हॉकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की। लद्दाख के मोहम्मद मुस्तफा कुमाल ने भी सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा को अनुभव आधारित बनाने का प्रयास किया। उनके काम में छोड़े गए सैन्य बंकरों को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना और कक्षा को मॉक पार्लियामेंट में बदल कर विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना शामिल है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, शिक्षक हमारे जीवन में उन लोगों में शामिल होते हैं जिनका प्रभाव अक्सर कक्षा खत्म होने के बाद भी बना रहता है। कोई शिक्षक किसी बच्चे में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, कोई उसे अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ता है, तो कोई मुश्किल परिस्थितियों के बीच उसे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। शिक्षक दिवस हमें ऐसे ही योगदानों को याद करने और शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर देता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने और तकनीकी सहयोग दिया अक्षत ममगाई ने। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289-09-4044।
3: सुर्खियों में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और

उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो से एसआरसीसी गए और कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद और में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है ये 7.8% की ग्रोथ भी

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम वही आपका अपना पानी पर लिखी कहानी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाती हैं। आज जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है दस्तक खुशियों की। इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

साल का सबसे युवा और सर्वाधिक कामयाब स्टार्टअप के वर्ग में जो विजेता कपल है उसका नाम है मनस्वी और सार्थक, एंकर ने कहा। स्टार्टअप की दुनिया में आप दोनों रोल मॉडल माने जाते हैं। इन्होंने नई सोच, हिम्मत और मेहनत के साथ स्टार्टअप को नया आयाम दिया है। ये एक ऐसे युवा स्व उद्यमी है जिन्होंने मेड इन इंडिया की सोच को गति दी है, प्रगति दी है, और आज ऐसे ही लोगों की कामयाबी को हम मना रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं मनस्वी और सार्थक से उनकी कामयाबी का राज। एंकर ने ये प्रश्न किया तो सार्थक ने कहा, देखिए दिल्ली में 3 साल तक मैंने डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया। उस दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लोग घर पर बैठे अपने दरवाजों पर उस दस्तक का इंतजार करते हैं कि कोई उनके लिए चीजें डिलीवर करे। इंतजार करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और डिलीवर करने वाले बहुत कम। तो हमारा पहला स्टार्टअप था डिलीवरी सर्विस ट्रेनिंग। उधर मनस्वी ने भी बताया कि वो कनाडा से पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के वक्त महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट कर रही थी और उसकी टीम को बेस्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला था। उसी वक्त उसने सोच लिया था कि भारत लौटकर वो जरूर कुछ अपना काम करेगी और उसकी खुशकिस्मती कि उसे सार्थक का साथ मिला। मनस्वी ने कहा, हमारा दूसरा स्टार्टअप डिलीवरी गर्ल्स की ट्रेनिंग और टीम तैयार करना था। एंकर ने फिर पूछा, आपका लेटेस्ट स्टार्टअप का वीडियो वायरल हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सार्थक बोला, इसका श्रेय तो मम्मी को जाता है। उन्हीं का आइडिया था कि ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को घर जैसा खाना बनाकर खिलाएं, डिलीवर करें तो फिर आम के आम और गुठलियों के दाम। बहुत सारी गृहणियां हैं जो अच्छा खाना बनाती हैं और फूड डिलीवरी सर्विस भी करना चाहती हैं, पर नहीं जानती कहां से करें, कैसे शुरू करें। तो हम लोगों ने फूड फ्रॉम किचन टू ऑफिस ऐप शुरू किया और अगले 2 साल में हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा गृहणियों को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएं। एंकर ने फिर पूछा, कुछ और बताइए अपने सफर के बारे में। सार्थक ने बताया, देखिए कोई भी सफर हो ना, वो एक कदम से शुरू होता है, बशर्ते वो कदम सही दिशा में हो। अगर सही हम सफर मिल जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। मैं खुशकिस्मत रहा कि हौसला देने वाली मेरी माँ और सही राह दिखाने वाली मेरी हमराही मनस्वी दोनों मेरे साथ थे। पर इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। मैंने बड़ौदा में हाई स्कूल की पढ़ाई की और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। फिर मैंने पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करना भी शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, मैं कई बार गिरा, पर माँ की बात याद रहती, इरादे अगर नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं।

अभी भी याद है 5 साल पहले का वो दिन, कहर मानसून का ऐसा जैसे सैलाब आ गया हो। क्या रास्ते, क्या मकान, हर तरफ पानी पानी। यातायात तो ठप, घर से बाहर निकलना दुश्किल।

दुश्वार। कितने सारे पेड़ गिर गए और सारे एरिया में बिजली गायब। ऐसे मौसम में सार्थक डिलीवरी करने के लिए निकला। डिलीवरी अपूर्व को देनी थी। अपूर्व के घर में बारिश के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और घर में खाने योग्य कुछ भी नहीं था। जब उसने डिनर का ऑर्डर दिया तो बाहर का नजारा देखकर मायूस हो गया। यहाँ पेट में आग लगी थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था डिलीवरी बॉय, रेनकोट पानी से तरबतर। बिजली नहीं है ना, इसीलिए डोरबेल नहीं बजाई, अपूर्व ने खाने का पैकेट लेते हुए कहा। तो लिफ्ट भी बंद हो गई होगी ना, तुम सातवीं मंजिल तक पैदल आए? वो मुस्कुराया। पेमेंट कैसे करेंगे सर, कैश या ऑनलाइन? अपूर्व ने पैसे दिए और बोला, गरम चाय लोगे या कॉफी? बोलो। थैंक यू सो मच, और भी बहुत जगह फूड डिलीवरी करनी है। अगर कुछ देना चाहते हैं सर तो बस अच्छी ऑनलाइन फीडबैक दे देना और रेटिंग दे देना। श्योर श्योर, क्या नाम है तुम्हारा? सार्थक संघवी। खाने का पैकेट खोलने से पहले अपूर्व ने मोबाइल पर ऐप खोला, सार्थक को 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा, बेस्ट डिलीवरी बॉय।

रात तक 7 डिलीवरी के ऑर्डर पूरे किए। ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने सबसे पहले गर्मा गर्म सूप दिया। पूछा, सार्थक तुमने कैसे मैनेज किया? आज 3 बॉयज छुट्टी पर है और बेटा तुमने तो अकेले सारा काम संभाल लिया। बहुत अच्छे, वाह। बॉस अपनी वाहवाही शब्दों से नहीं पैसों से कर देना, इस बार उन तीनों का बोनस भी मुझे दे देना। दोनों हंस पड़े। तभी मैनेजर का मोबाइल बज उठा। कंपनी के सीईओ का कॉल था। बात पूरी होते ही सार्थक ने पूछा, ऑल वेल? हाँ। बिग बॉस ने बताया कि अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के 2 डिलीवरी बॉयज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोल्डन अपार्टमेंट में जो लड़की से छेड़खानी का केस था, उसकी सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों बॉयज की क्लिपिंग मिली है। सारी मीडिया में उसका हो हल्ला हो रहा है। सार्थक ने सूप खत्म करते हुए कहा, कुछ ऐसे बदमाश लड़कों के कारण सबका नाम खराब होता है। बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हारी सर्विस फीडबैक तो हमारी कंपनी में सबसे अच्छी है, बेस्ट रेटिंग मिल रही है। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा। उसने फोन को काट दिया। मैनेजर ने पूछा, भाई ये कौन है जो तुम्हें बार बार कॉल करता है और तुम हमेशा अवॉइड करते रहते हो? फोन फिर बज उठा। इस बार सार्थक ने फोन उठा लिया। हेलो, हेलो माँ, बेटा मैं टीवी पर देख रही हूँ, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब माँ मॉनसून है तो बारिश तो होगी ना? बेटा सब तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए कॉल तो करेंगे ना। तुमने फिर से मनस्वी का फोन काट दिया? माँ मैं काम पर हूँ, प्लीज। देखो बेटा, अपने पार्ट टाइम जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई के साथ साथ कभी अपने लिए, अपने अपनों के लिए भी तो वक्त निकालो। ओके मम्मी जी, और कोई हुक्म? अच्छा, बड़ौदा कब आ रहे हो, घर कब आओगे बच्चे? अब पहले एग्जाम तो दे दूं, डिग्री मिल जाए, अपनी पहचान तो बनाऊं। तुम और तुम्हारे बहाने। चलो ऐसा करो, एक बार मनस्वी से बात कर लो, वो बहुत फिक्र करती है तुम्हारी। माँ मुझे अब रूम पर लौटना है, बारिश बहुत तेज है, बाद में कॉल करूं, बाय।

बाद रिव्यू मीटिंग थी। मैनेजर बोले, देखिए आज कंपनी सीईओ खुद समीक्षा मीटिंग में शामिल होंगे, सब तैयार रहना। सीईओ ने आते ही कहा, बॉयज अब त्योहारों का सीजन शुरू होगा, हमारा टर्नओवर ग्राफ डबल होना चाहिए। हाँ, आर वी रेडी? यस सर, सभी ने बोला। किसी को कोई शिकायत या कोई फीडबैक? सर वो डिलीवरी के लिए जब हम बाइक पर जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है, कंपनी की पंच लाइन है सबसे तेज डिलीवरी, और स्पीड पर गौर करते हैं तो ट्रैफिक नियमों से पंगा हो जाता है। देखो भाई, रोड रूल्स तोड़े बगैर स्पीड और सेफ्टी में जो बैलेंस बनाए वही होते हैं बेस्ट डिलीवरी बॉय। पर सर कुछ कस्टमर्स तो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि दिमाग घूम जाता है। क्लाइंट इज द किंग या क्वीन, याद रहे सिर्फ खाना डिलीवर करने जाते हो, कोई दोस्त बनाने नहीं जाते। और सर अक्सर ये जो रेस्टोरेंट से हम फूड पिकअप करने जाते हैं ना, उनकी पैकेजिंग इतनी खराब होती है कि खाना गिर जाता है। सीईओ ने कहा, देखो सिर्फ डिलीवरी पर ही नहीं पिकअप पर भी ध्यान देना सीखो, वो बहुत जरूरी है। सर ये हमारे पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। सीईओ बोले, एक बार फिर हाईएस्ट रेटिंग एंड बेस्ट फीडबैक है सार्थक। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा, उसने कॉल काट दी। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, गो हैड टेक द कॉल। माँ मीटिंग चल रही है, सार्थक बोला। ओ मैं बाद में करूँ क्या? नो नो इट्स फाइन, अब बोलो। आपकी आवाज से तो लगता है आप बहुत खुश हो। ऑफ कोर्स दो दो वजह है, पूछोगे नहीं? मेरे पास कोई और चॉइस है, सुनना तो पड़ेगा, बताओ। रूपा मेहता ने बताया कि तुमने उनके लोन की आखिरी किश्त भी चुका दी है। ऑफ कोर्स माँ, रूपा आंटी और संजय अंकल ने तो मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की है, आप ही से तो सीखा है किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। शाबाश मेरे बच्चे। माँ आप खुशी की दूसरी वजह भी बताने वाली थी ना? हाँ बेटा, वो रूपा जी ने जो नया क्लाउड किचन शुरू किया है ना, मेहता जी अब उसे और भी बढ़ाना चाहते हैं, हेड शेफ मैं ही होंगी, और उनको तो तुम्हें पता ही है कि मुझ पर कितना भरोसा है। वो चाहते हैं कि काम और बढ़े। मनस्वी अगले महीने कनाडा से आ रही है ना? मनस्वी का नाम सुनते ही सार्थक अनमना हो गया, बोला, माँ मैं फोन रखता हूँ, डिलीवरी के लिए जाना है। माँ की बेस्ट फ्रेंड रूपा मेहता की इकलौती बेटी मनस्वी स्कूल के दिनों से ही सार्थक को चाहती थी, लेकिन सार्थक चाहता था समन्विता को। पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था, माँ के केटरिंग काम में सार्थक हाथ बटाने लगा। वहीं अचानक से समन्विता दिल्ली चली गई और सार्थक भी आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली आने का असली कारण था समन्विता को ढूंढना। 3 साल गुजर गए लेकिन कभी भी समन्विता को भुला नहीं पाया।

पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के काम और स्टार्टअप की पढ़ाई को वो इतनी शिद्दत से करने लगा कि कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं रहता था। सार्थक के मैनेजर ने कहा, सार्थक आज ये जो ऑर्डर है ना, ये बड़ा हाई एंड क्लाइंट है और ये स्पेशल केक है और साथ में फ्रेंच क्यूजीन है। देखो संभाल कर डिलीवरी करना। एड्रेस दिया, रिहायशी इलाके में पेंट हाउस था। सार्थक ने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला, सामने खड़ी थी समन्विता। इतने सालों बाद अचानक उसको देखकर सार्थक के मन में जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा, सांसें रुक गईं। मन ही मन पूछ बैठा, अचानक कहाँ चली गई थी? कोई खबर भी नहीं, ना कोई पता। साथ थी, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर तुम कहाँ चली गई थी? क्या कोई मजबूरी थी? मैं तुम्हें भूल नहीं सका, शहर छोड़कर भी देख लिया, तुम्हें भूल नहीं पाया। ये सब प्रश्न उसके मन में ही चल रहे थे। कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, कौन है समन्विता? और समन्विता बोली थी, कोई नहीं, सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। उस आदमी ने कहा, पार्सल रिसीव कर लो, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है। सार्थक चुपचाप खड़ा रह गया। तो क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पैकेट लेते हुए पूछा था, तुम दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? वो कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसने कहा, त्योहार के दिन आए हो, रुको, टिप देना तो बनता ही है। फिर से उस आदमी की आवाज आई, क्या हुआ समन्विता? समन्विता ने पीछे मुड़कर आवाज दी, कुछ नहीं, डिलीवरी बॉय को टिप दे रही हूं। वो पर्स लेने अंदर मुड़ी, सार्थक फौरन वहां से निकल गया। सार्थक के आंसुओं को अच्छा बहाना मिल गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादलों से बरसते पानी के साथ आंखों का

हरा पानी भी घुल मिल गया। बाइक चलाते वक्त समन्विता नाम का पागलपन आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दिया था। सिर्फ डिलीवरी बॉय, बार बार ये बात उसके मन में गूंज रही थी।

ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने कहा, दरवाजों पर डोरबेल बजाकर घर घर तुम सिर्फ खाना नहीं देते सार्थक, खुशियां डिलीवर करते हो। और देखो आज खुशियां खुद तुम्हें तलाशते यहाँ आ गई हैं। देखो कौन है? सार्थक ने मुड़कर देखा, माँ और मनस्वी। सरप्राइज! मनस्वी के हाथ में केक था। बोली, अब तक तो मेरे फोन को अवॉइड करते थे, ये लो आज अपने बर्थडे केक को काटो, वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। सार्थक भावुक हो गया, वो भूल गया था आज उसका बर्थडे है। वो माँ से गले लगकर रो पड़ा। मनस्वी की तरफ देखकर बोला, सॉरी, डिडंट मीन टू अवॉइड यू, बट अपने काम और पढ़ाई को लेकर मैं। माँ बोली, अब बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले केक काटो। मनस्वी ने कहा।

और बर्थडे बॉय के साथ हम करेंगे डिनर। सार्थक बोला, जिंदगी का बेस्ट बर्थडे सरप्राइज मिला है, थैंक यू सो मच आने के लिए और मम्मा को भी साथ लाने के लिए। देखो मैं इंडिया आते ही सबसे पहले तुमसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, पर मैं ये भी जानती हूँ कुछ तो ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। सार्थक, बचपन से ही हम कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, क्या दिल की बात मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? मनस्वी, प्राइमरी स्कूल से हम साथ पढ़ते थे, पर पापा के अचानक गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। तो क्या तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल लगता था सार्थक? नहीं नहीं मनस्वी, इनफैक्ट तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मुझे और मेरी माँ को बहुत सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की, माँ को काम दिलवाया। तुम और तुम्हारी फैमिली कितने अच्छे हैं, मगर प्रॉब्लम मेरे साथ ही थी। मैं यहाँ समन्विता को ढूंढने आया था, मेरी दोस्त समन्विता। हाँ मुझे मालूम है, सीरियसली तुम ये जानती थी? सार्थक, मुझे साफ नजर आ रहा था कि तुम दिल्ली किस लिए गए हो। तुम दिल के बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। तुम नहीं जानते, तुम खरा सोना हो, तुम अपनी कामयाबी पर मोहर लगा सकते हो। सार्थक भावुक हो गया, बोला, मनस्वी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज जीवन का नया साल शुरू हो रहा है, मैं नए नजरिए से जिंदगी को निहारना चाहता हूँ, नए रिश्तों की बुनियाद रखना चाहता हूँ, और उससे भी पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए और तुम्हारे फोन अवॉइड करने के लिए। मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्त तो हम हमेशा से रहे हैं, हाँ आज से हैं पक्के दोस्त।

एंकर ने खनकती आवाज में कहा, वाकई इसमें प्रेरणा भी है और प्यार भी। सार्थक जी वापस आइए। सार्थक ने कहा, सॉरी मैं भूल गया था मैं कहाँ पर हूँ। दरअसल जब कोई स्टार्टअप की दहलीज पर कदम रखता है ना, तो अपनों के सहारे की बहुत जरूरत होती है। शुरुआती दौर संघर्ष से भरा होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मैदान

सॉरी, मैं भूल गया था मैं कहाँ पर हूँ। दरअसल जब कोई स्टार्टअप की दहलीज पर कदम रखता है ना, तो अपनों के सहारे की बहुत जरूरत होती है। शुरुआती दौर संघर्ष से भरा होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मैदान छोड़कर भाग जाने का मन करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर मेरे जीवन की नारी शक्ति ने मेरा हौसला बढ़ाया। आज अगर मेरी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो वो है मेरी माँ और मनस्वी। तभी मैं क्षितिज की उड़ान ले पाया हूँ।

तो दोस्तों, ये थी कहानी दस्तक खुशियों की, जिसे आपके लिए लिखा था शीतल शाह ने। सपने जरूर पूरे होते हैं अगर उन्हें खुली आंखों से देखा गया हो। आज की कहानी, जिसमें सार्थक ने जिंदगी शुरू की एक डिलीवरी बॉय से और बन बैठा एक बहुत बड़े स्टार्टअप का मालिक, इसमें भी तो थे उसके देखे गए सपने, मेड इन इंडिया के सपने, उसकी सोच जिससे कि स्टार्टअप को मिली थी गति और प्रगति। तो संभव सब कुछ है, जरूरत है अगर आप मन में कोई भी बात ठान लें, कोशिश करें, तो जरूर कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। और इसी संदेश के साथ हम समेटते हैं आज की कहानी दस्तक खुशियों की। रश्मि कुकरेती को इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रिय तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक

0: विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लूरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र वी घुग्गे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी बनाए गए हैं। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports are now exceeding 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। गीत सुहाने लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि आपके बीच। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आता नहीं है होने का यकीन क्या बात करूं, आता नहीं है होने का यकीन क्या बात करूं, है दूर बहुत वो ख्वाब नशीं क्या बात करूं, क्या बात करूं जो अक्स था मेरी आंखों में, जो छोड़ गया एक शाम कहीं क्या बात करूं, क्या बात करूं ये लोग भला कब सुनते हैं, सब बातें अंदर डूब गईं क्या बात करूं, क्या बात करूं मेरे साथी मुझसे छूट गए, वो लोग नहीं वो ख्वाब नहीं क्या बात करूं, आता ही नहीं होने का यकीन क्या बात करूं, है दूर बहुत वो ख्वाब नशीं क्या बात करूं, क्या बात करूं।

कौन रहता था कहाँ याद नहीं, कोई उजला सा भला सा घर था, किसको देखा था वहाँ याद नहीं। अब वो गलियाँ वो मका याद नहीं, कौन रहता था कहाँ याद नहीं। भाई जब बात होती है किसी के यादों की, किसी के साथ की और किसी के साथ मोहब्बत की, तो कुछ ऐसे गीत हैं जिन्हें सुनने के बाद दिल बहुत तसल्ली पा जाता है, चाहे दिल कितना भी बेकरार क्यों ना हो। तो चलिए सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में इशारा फिल्म का ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, खैर औरों ने भी तो चाहा है तुझसा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं।

ही ऐसा होना। ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना, खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना। देखता और न ठहरता तो कोई बात भी थी, जिसने देखा ही नहीं उससे खफा क्या होना। तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, बस किसी वक्त बुरा लगता है तन्हा होना। ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना, जिसने देखा ही नहीं उससे खफा क्या होना, खफा क्या होना।

तुम आए हो तुम्हारे साथ भी दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। तुम आए हो तुम्हारे साथ भी दूर जाकर देख लेता हूँ। कुछ दूर तुम्हारे साथ जाकर देख लेता हूँ। अजब क्या इस करीने से कोई सूरत निकल आए। अजब क्या इस करीने से कोई सूरत निकल आए। तेरी बातों को ख्वाबों में मिलाकर देख लेता हूँ। हवाएं जिनकी आंधी खिड़कियों पर सर पटकती हैं, मैं उन कमरों में फिर शम्मा जलाकर देख लेता हूँ। उड़ाकर रंग कुछ होठों से कुछ आंखों से कुछ दिल से। उड़ाकर रंग कुछ होठों से कुछ आंखों से कुछ दिल से। गए लम्हों की तस्वीरें बनाकर देख लेता हूँ। तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ। तुम आए हो तो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ।

वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, जिसकी सांसों से महकते दरो बाम तेरे, ये मकां बोल अब मकां वो मकी रहता है। रोज मिलने पे भी लगता था कि जग बीत गए, इश्क में वक्त का एहसास कहाँ रहता है। मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है।

और इसी गीत के साथ, गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति

0: राजनीति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉक्टर तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चर्नी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared the smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as a very special ones and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni had left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Sri Ram and bowed to his enduring vision. Minister of State for External Affairs Kirtivardhan Singh reached Saudi Arabia yesterday on his maiden 4-day official visit. During the visit, he will meet the Saudi Minister of Human Resources and Social Development, Minister of State for Foreign Affairs and Climate Affairs Envoy, Vice Minister for Environment, Water and Agriculture, as well as other dignitaries. The minister will also meet a large cross-section

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत। फिल्म है सड़क, आवाज है कुमार शानू की।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। ये कहना तो नहीं काफी कि बस प्यारे लगे हमको, ये कहना तो नहीं काफी कि बस प्यारे लगे हमको, उन्हें कैसे बताएं हम कि वो कैसे लगे हमको। हम उनको सोच में गुम देखकर वापस पलट गए, वो अपने ध्यान में बैठे हुए अच्छे लगे हमको। भाई जब इश्क मोहब्बत और प्यार हो जाता है तो ये जो दिल है वो शेर व शायरी भी करने लगता है। यकीन नहीं आ रहा आपको तो सुनिए ये गीत, फिल्म है साजन।

चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया। मैं बहुत खुश था कड़ी धूप के सन्नाटे में, क्यों तेरी याद का बादल मेरे सर पर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि हंस के बोला करो बुलाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है मुस्कुराया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका है घर आया जाया करो।

रात सुरमई के हम अंतिम पड़ाव की तरफ आ ही गए हैं दोस्तों, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत। बहुत खूब कहा है किसी ने कि सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं, सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं, दो खज को चाहता हूं कि जन्नत पे वार दूं, इतनी सी है तसल्ली कि होगा मुकाबला, दिल क्या है जहां भी अपनी कयामत पे वार दूं, एक ख्वाब था जो देख लिया नींद में कभी, एक नींद है जो तेरी मोहब्बत पे वार दूं, इतनी सी तसल्ली है कि होगा मुकाबला, दिल क्या है जहां भी अपनी कयामत पे वार दूं।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी जल्द ही अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉक्टर तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओ

0: माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियांग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said, the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. President Draupadi Murmu yesterday appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. A press communique issued by the Rashtrapati Bhavan informed about it. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh, has also served as Deputy Chief Minister of the state. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh reached Saudi Arabia yesterday on his maiden 4-day official visit. During the visit, he will meet the Saudi Minister of Human Resources and Social Development, Minister of State for Foreign Affairs and Climate Affairs Envoy, Vice Minister for Environment, Water and Agriculture, as well as other dignitaries. The minister will also meet a large cross-section of the Indian community in Saudi Arabia and Indian business leaders, entrepreneurs and professionals during the visit.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

तुझे देखा तुझे चाहा। चले तो दोनों ही थे एक साथ, चले तो दोनों ही थे एक साथ, पता नहीं कैसे रास्ता भटक गए। मंजिल तो दोनों की एक ही थी, मंजिल तो दोनों की एक ही थी, पता नहीं बीच में कैसे अटक गए। की होंगी कुछ गलतियां हम दोनों ने ही एक सी, की होंगी कुछ गलतियां हम दोनों ने ही एक सी, पर यहां गलतियां तुम मेरी और हम तेरी समझ गए। रास्ते तो सभी ठीक थे अपनी मंजिलों के, रास्ते तो सभी ठीक थे अपनी मंजिलों के।

राह चलते जो मिल जाते थे कभी, राह चलते जो मिल जाते थे कभी, अब तो बुलाने से भी नहीं आते। आते थे वो हर रोज मेरे सपनों में, आते थे वो हर रोज मेरे सपनों में, अब तो उनके सपने भी नहीं आते। शिकायत खुद से करूं या खुदा से, शिकायत खुद से करूं या खुदा से, रहते हैं वो दिल में और उनके ख्याल दिमाग से नहीं जाते। 3:25 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हकीकत मानो या फसाना, हकीकत मानो या फसाना, तुमसे मिले हुए बीत गया जमाना। मिलोगे कभी तुम हमसे, रहते हैं इसी उम्मीद में। मिलोगे कभी तुम हमसे, रहते हैं इसी उम्मीद में। दिल लगाने को अच्छा है ये बहाना। रहते हो इतने पास तो मिलते क्यों नहीं, रहते हो जब इतने पास तो मिलते क्यों नहीं। यूं बिना वजह ईद का चांद क्यों ही बन जाना। मिल गए कभी जो तुम हमसे, मिल गए कभी जो तुम हमसे राह चलते, तो फिर क्या बनाओगे ये सोच लो बहाना। हकीकत मानो या फसाना, अब तुमसे मिले हुए बीत गया जमाना। 3:46 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

भटक सा गया हूँ तेरे एक दीदार के बाद, भटक सा गया हूँ तेरे एक दीदार के बाद, अब करना क्या है कोई मुझे ये बता दे। हट जा मेरे रास्ते से हो सके तो, हट जा मेरे रास्ते से हो सके तो, या फिर तू ही मुझे कोई नया रास्ता दिखा दे। 3:56 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के IoN डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए NEET PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के सम्पन्न हुई। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कुछ शिकायतें भी बनी रहने दीजिए तेरे मेरे दरमियान, कुछ शिकायतें भी बनी रहने दीजिए तेरे मेरे दरमियान, हर रिश्ते में होती हैं कुछ तो मजबूरियां। सब कुछ ठीक चले ऐसा कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ ठीक चले ऐसा कोई रिश्ता नहीं, पर कुछ भी ठीक ना चले ना बढ़ाइए रिश्तों में वो दूरियां। 4:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

0: एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये अलबेली प्यार की राहें। कर लो सफर इस जिंदगी के सभी पूरे, कर लो सफर इस जिंदगी के सभी पूरे, वरना जिंदगी तो सफर कर ही रही है। घूम लो तुमको जहां जितना मर्जी है घूमना, घूम लो तुमको जहां जितना मर्जी है घूमना, वरना ये धरती तो घूम ही रही है। घूम लो तो बन जाएंगी कुछ यादें आगे के लिए भी, घूम लो तो बन जाएंगी कुछ यादें आगे के लिए भी, वरना घर बैठे तो ये जिंदगी गुजर ही रही है। चार बजकर 26 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ ही पाओगे। 4:34 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए

उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी जमीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन पर तुमको नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन तुमको जमीन पर नीचे, सारी जिंदगी तो कोई हवा में नहीं रहता। 4:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉ. शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉ. शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुछ 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब की रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के IOM डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए कल NEET PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को राजस्थान के जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर बिजली की आंतरिक समस्या के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वे चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं और हमेशा की तरह अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज का दिन कुछ नया होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ कार्यक्रम भोर सुहानी में। आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ, आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक प्यारे से गीत के साथ।

तलाश तो अब बस मुझे सुकून की है, तलाश तो अब बस मुझे सुकून की है। ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होती, कुछ आज भी हैं, कुछ कल भी थीं और कुछ आगे भी रहेंगी। 5:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम।

अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। अब जीवन में जागना है तो एक नई उम्मीद के साथ ही जागिए। सिर्फ सोकर उठने को जागना नहीं कहते। 5:27 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।